मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56:35 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी इंदौर है, 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिग्रेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश

0: जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

देश केवल हमारी पहचान नहीं, हमारा गौरव भी है। आइए ईमानदारी, अनुशासन, सेवा और राष्ट्रप्रेम को जीवन का आधार बनाएं। अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनें।

ईश्वर एक है और समस्त सृष्टि उसी की संतान है। हमें सदैव प्रेम, सत्य, सेवा और समानता के मार्ग पर चलना चाहिए। यही संदेश मानवता को जोड़ता है और जीवन को सार्थक बनाता है।

टूट भक्ति, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। आइए संत मीराबाई की निष्काम श्रद्धा से प्रेरणा लें और अपने हृदय में प्रभु के प्रति अटल विश्वास का दीप जलाएं।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति केवल एक पुकार नहीं, अकीदत की शीरी दावत है, जिसमें दुआओं की खुशबू, प्रेम का संदेश और इंसानियत की रोशनी मिलती है।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख किंशुक चौहान का, वाचन स्वर संजीव मालवीय का।
1: सफल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास एक जरूरी गुण है। जो लोग खुद को शांत और संयमित रखते हैं उन्हें सब कुछ आसान लगता है। हमें कभी ना कभी चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन हम सब अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए उसके साथ जूझते हैं और आत्मविश्वास के साथ उस चुनौती का सामना कर लेते हैं। आत्मविश्वास का महत्व किसी भी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास यहां केवल आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विकास, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत उपलब्धियों में भी सकारात्मक योगदान करता है। आत्मविश्वास वो स्तंभ है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाता है। आत्मविश्वास लोगों को बिना किसी नकारात्मकता के स्वतंत्र रूप से सोचने और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति के असफल होने की संभावना बहुत ही कम होती है। यदि व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हो तो उसके कार्य में आधी सफलता तो उसे वहीं मिल जाती है। आत्मविश्वास का मतलब खुद को श्रेष्ठ साबित करना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को जानते हुए सकारात्मक और सुरक्षित दृष्टिकोण रखना है। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो विचारों को स्वतंत्रता देती है और महान कार्यों को करने में मदद भी करती है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए समूह में शामिल होकर या कक्षा लेकर धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और ना कहना सीखना चाहिए। जो कार्य अनुचित लगे तो हम कई बार आत्मविश्वास ना होने के कारण मना नहीं कर पाते, और यदि आत्मविश्वास हो तो मना कर सकते हैं। यदि आत्मविश्वास हो तो व्यक्ति जीवन में आने वाली हर अड़चनों, कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। आत्मविश्वास ऐसी शक्ति है जो असंभव से असंभव काम को भी संभव बना देती है। दूसरों से अपनी तुलना ना करना, आलोचनाओं का स्वीकार करना और अपने अंदर खूबियां देखना, ये सब आत्मविश्वास बढ़ाने में व्यक्ति की सहायता करते हैं। हमें निरंतर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। प्रायः ये देखा जाता है कि बहुत से गुणी व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी के कारण अच्छे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। आत्मविश्वास की कमी हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात आ जाए, बल्कि

0: निरंतर प्रयास और आत्म सुधार का परिणाम है। यदि व्यक्ति आत्मविश्वास का दामन थामे रखे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है। ऐसे हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें व्यक्ति के आत्मविश्वास ने उसे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को निर्भीकता से व्यक्त करता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध बेहतर होते हैं। इसीलिए हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आलेख किंशुक चौहान का, वाचन स्वर संजीव मालवीय का।

0: आकाशवाणी इंदौर से अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है हरा धनिया उगाओ आय बढ़ाओ। वाचन स्वर डॉक्टर अनुराधा शर्मा का है।
1: सगड़ा किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करा हरो धनियो उगाओ न आय बढ़ाओ इना विषय पे। हरो धनियो या धनिया पत्ती एक कम अवधि की न अधिक मांग वाली फसल है और बहुत लाभदायक मसालो है न सब्जी भाजी में तो इका बगैर स्वाद अन्याय। धनिया पत्ती की फसल सब्जी की फसल है न इको उपयोग ताजी पत्ती उनको उपयोग पूरा वर्ष भर हमारा घर में भोजन बनाने में होए। इका साथ साथ होटल में रेस्टोरेंट में और खाद्य प्रसंस्करण न मसाला उद्योग में भी इको उपयोग भरपूर मात्रा में होए। तो यदि हमारा किसान भाई बहनों हरा धनिया को उचित प्रबंधन करके की खेती करेगा तो कम समय में अच्छी आय भी प्राप्त कर सके। सबसे पहला तो हमारे किसान भाई बहनों को ये मालूम है कि हरी धनिया को उपयोग दो तरह से होए, पत्ती का रूप में भी बीज का रूप में भी। तो हमारा किसान भाई बहनों भी इसकी फसल दो अलग अलग तरीका से करे, हरी पत्ती होने के लिए न बीज उत्पादन का वास्ते भी करे। जो किसान भाई बहनों हरा धनिया को उपयोग उनकी पत्ती वास्ते कर ही रहा है उनकी फसल 30 से 40 दिन में बाहर आई जाए। उनकी फसल अवधि है 30 से 45 दिन। और जो किसान भाई बहनों हरी धनिया के बीज उत्पादन हेतु लगाए उनकी फसल अवधि है 90 से 120 दिन की। हरी धनिया का अंकुरण का वास्ते जो तापमान है वो 20 से 25 डिग्री के आसपास होना बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छी वृद्धि के लिए 15 से 25 डिग्री को तापमान भी अच्छो रहे है। पर हमारे किसान भाई बहनों के ये बहुत अच्छी समझने की बात है कि ये हरी धनिया के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसी फसल है कि ज्यादा यदि जल भरेल रहेगो तो वे सड़ी के खत्म हो जाएगी। किसान भाई बहनों के मिट्टी को पीएच को भी ध्यान रखना है कि 6.0 से 7.5 को पीएच खेत को होना चाहिए। वैसे हरी धनिया की किस्म की बात करा तो गुजरात कोरिएंडर, हिसार सुगंध और पंत हरितिमा। पर हमारे किसान भाई बहनों के सलाह है कि वे अपना खेत में किस्म को चयन करता समय अपनी स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या जी कृषि विभाग ने जो अनुशंसा करिए उन अनुसार किसान किस्म को चुनाव करे। बीज दर की बात करा तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से बीज लेनु बहुत आवश्यक से है। कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखनु आवश्यक है। सिंचाई के किसान भाई बहनों देखे तो पहली सिंचाई बुआई का तुरंत बाद और इका बाद आवश्यकता का अनुसार हर 7 से 10 दिन का अंतराल पे हल्की सिंचाई करनु बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि जल भराव से बचाव हरी धनिया के लिए वरदान है। अब अपन उत्पादन की बात करा तो पहली कटाई 30 से 35 दिन में, बाद में 2-3 कटाई और संभव है यदि अच्छे तरीका से प्रबंधन हमारे किसान भाई बहनों ने करी लियो है। तो औसत हरी पत्ती को उत्पादन 80 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाई बहनों को मिली जाए। हरा धनिया की कीमत मौसम ने बाजार के अनुसार बदलती रहे। सामान्य रूप से किसान भाई बहनों के स्थानीय मंडी में बेचे, होटल में बेची दे, सुपरमार्केट में भी जाई के बेची सके और सीधे उपभोक्ता होने के भी बेची के या बिक्री करी के

0: एक कम अवधि में अच्छो लाभ प्राप्त कर सके है। बहुत सारा किसान भाई बहनों ये बात को भी जाने कि जब दूसरा किसान हन वो की खेती हरी धनिया की खेती नहीं करी रहा है, तब वे हरी धनिया की खेती करी रहे, ऑफ सीजन उत्पादन से भी उनके नियमित आपूर्ति से अच्छी आय में वृद्धि हुई जाए। और यदि वे चरणबद्ध तरीका से बुआई करें, मतलब 8 दिन का बाद बुआई कर दे, फिर उसका 8 दिन बाद और एक बार बुआई कर दे, तो लगातार उनके उत्पादन मिल सके है। और बहुत सारा किसान भाई बहन हन ओके अच्छी तरीका से ग्रेडिंग भी कर ले, स्वच्छ और धुलाई करी के ओके अलग अलग भाग में बांटी ले, थोड़ी अच्छी धनिया के अच्छो भाव मिली जाए, कभी कभी थोड़ी सी गली जाए तो ओके कम भाव में भी बेची के मुनाफो कमाई सके है। तो आज हमारो किसान भाई बहनों से योज केनु है
1: कार्यक्रम खेती की बातें में। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनुराधा शर्मा से जानकारी, विषय था हरा धनिया उगाओ आय बढ़ाओ। आकाशवाणी इंदौर से अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

माया नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुभत्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

आकाशवाणी इंदौर से अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 8:30। 9:00 लोक संगीत में आज कलाकार होंगे बलराम देवीलाल जाटव। आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम की का 9वां एपिसोड, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 9:40 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित जसराज का गायन। राग होगा भिन्न षडज। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा सुबह 10:00। 10:05 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

दिन में 11 बजे से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने फिल्म संगीत। दिन में 12 बजे 12:30 बजे से कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। महिला कार्यक्रम दिन में 1 बजे लोक संगीत 1:30 बजे 1:45 पर सुगम संगीत 2 बजे फिल्म संगीत और चित्रपट संगीत दिन में 2:30 बजे।

हमारी शाम की ये सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ। इसमें आज का आकर्षण रहेगा क्रम हेलो फ्रेंड्स। 5:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 6 बजे आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इसके अंतर्गत आज सुनिएगा विश्व गुरु बनने में सौर ऊर्जा का योगदान विषय पर श्री अक्षय शर्मा से ली गई भेंट वार्ता। शाम 6:30 सुगम संगीत में कलाकार होंगी रूपाली मुखर्जी। लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। आज के कलाकार हैं बलराम देवीलाल जाटव। खेती गृहस्थी कार्यक्रम में शाम 7:20 पर आपको सुनवाएंगे श्री लखनदास बैरागी से ली गई भेंट वार्ता। विषय होगा पशुपालक पशुओं का रखरखाव बारिश के मौसम में कैसे करें। रात 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 8:15 आनंद ले सकते हैं आप कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का। चित्रगीत का प्रसारण समय रहेगा रात 9:15। आज रात 9:30 राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दें, सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम का 9वां एपिसोड, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये रूपरेखा थी आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नुस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटर वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता, 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में करेंगे माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देर रात उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों का लिया जायजा। और भाजपा ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद ये यात्रा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
0: उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने कहा कि बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर के जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की पहचान और परामर्श कर सकेंगे। विभाग आगे जेलों में साइको सोशल काउंसिलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई।

0: इसमें 7630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। इस वर्ष अब तक 1,25,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश आवंटन मिल चुका है। अभिभावक आरटीई पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे 20 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। 65 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्ग जैसी नगर को तीनों दिशाओं से जोड़ चुका है। वहीं मसूराहाई रोड बनने से भोपाल जाने की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5.86 करोड़ आभाईडी बनाई जा चुकी है। लगभग 20,000 स्वास्थ्य संस्थान और 18,000 स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। बैठक में एबीडीएम की प्रगति और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधान सभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल देर रात दोपहिया वाहन से और पैदल चलकर उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण का भी अवलोकन किया। इससे पहले कल उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नागदा में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में फूड इंडस्ट्री पार्क बनने से किसानों को लाभ मिलेगा।
1: 1,250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें। ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4,755 रुपए होगा। राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि निर्णय बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे 13 जुलाई तक प्रदेश में रिमझिम बारिश होगी। वहीं 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलिक्सटोन ने 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन के खेल तक 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। खेल मंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ कलेक्टर ने 13 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैतूल

कलेक्टर ने कल उप तहसील बोरदेही में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की, साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत आम का पौधा भी रोपित किया। डिंडौरी जिले के 50 मत्स्य पालकों ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर कल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री तीरदर्शन योजना के अंतर्गत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आज से 16 जुलाई तक कामाख्या शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पन्ना जिले में बरसात के मौसम में विभिन्न स्थानों पर झरना और जलप्रपात पर अत्यधिक समीप जाने, सेल्फी और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। आगर मालवा कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, जल संसाधन आदि विभागों की समीक्षा बैठक में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया। खंडवा जिले में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज से 18 जुलाई तक परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है दो आंखें बारह हाथ। शब्द रचना भरत व्यास की है, संगीत वसंत देसाई का।

कार्यक्रम में अब सुनिए मन्ना डे और साथियों के स्वर में उजाला फिल्म का गीत, बोल शैलेंद्र के, संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

हम घर घर जाते हैं, ये दिल दिखलाते हैं, पर ये दुनिया वाले हमको ठुकराते हैं। हम घर घर जाते हैं।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। कार्यक्रम में आप सुनिए ओपेरा हाउस फिल्म का गीत लता मंगेशकर मुकेश के स्वर में। मजरू के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने।

0: हम
1: दीवाने हो जाएंगे।
2: लीजिए अब सुनिए संगम फिल्म का गीत मुकेश, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर के स्वर में। शब्द रचना शैलेंद्र की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम सुनहरे पल का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अनारकली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज है। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को संगीत दिया है सी रामचंद्र ने।

लीजिए अब सुनिए नया दौर फिल्म का गीत आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया ओपी नैयर ने।

लीजिए अब सुनिए श्रीमान सत्यवादी फिल्म का गीत मन्ना डे सुमन कल्याणपुर के स्वर में। संगीत दिया है दत्ताराम ने।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। कार्यक्रम में अब किशोर कुमार की आवाज में अगला गीत, फिल्म का नाम है दो दुनी चार। संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

0: दवाओं पे लिख।
1: कार्यक्रम सुनहरे पल का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। शकील बदायूनी के बोल हैं, संगीत बद्ध किया है नौशाद ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी इंदौर है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विम्बल्डन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
5: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
6: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है, और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है। और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, कि स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बीओपीएस का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों

0: के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गणमन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन

0: managers. In FIFA World Cup, Spain booked spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1. Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं स्वीकार करें महिमा का नमस्कार। बात करते हैं आज रेडियो की। रेडियो केवल एक संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और लोगों को जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु है। इसकी पहुंच बहुत दूर दूर उन क्षेत्रों तक भी है जहां तक अन्य माध्यम आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। रेडियो हमारा मनोरंजन करता है। शिक्षा, समाचार, कृषि, स्वास्थ्य, जन जागरूकता के अनेक सारे कार्यक्रम हम रेडियो पर अक्सर सुनते रहते हैं। रेडियो हमारा सबसे पुराना साथी है, जन संचार माध्यमों में से एक। बिना रेडियो के हम मनोरंजन कहाँ से करें। आजकल तो कई साधन हो गए हैं, लेकिन पुराने समय में एक ही साधन था रेडियो का, जिस पर हम गीत सुनते थे, संगीत सुनते थे। लेकिन आज भी हम काम करते करते रेडियो को अपने साथ रखते हैं और सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम रेडियो से सुनते रहते हैं। और सबसे बड़ा तो गीत संगीत है जो रेडियो के माध्यम से हमारा मनोरंजन करता है। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ इस गीत से।

श्रोताओं, रेडियो एक माध्यम है जो न केवल सूचना देता है बल्कि संवेदनाओं को भी जीवंत कर देता है। सुबह की पहली किरण के साथ बजती मधुर धुनें, खेत खलियानों तक पहुंचती उपयोगी जानकारियां, देश दुनिया के समाचार, श्रोताओं की फरमाइशें और मन को छू लेने वाले गीत, रेडियो ने वर्षों से हमारी दिनचर्या को अपनी मधुर उपस्थिति से समृद्ध कर दिया है।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में रेडियो से बात कर रहे हैं हम। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दिन भर हमारे साथ बना रहता है, अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के साथ। ये कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनेपन का एहसास हमेशा कराता रहता है। इसकी आवाज़ अनजाने लोगों को भी एक परिवार की तरह जोड़ती है, जैसे आपको और हमको जोड़ रखा है। यही कारण है कि बदलते समय और नई तकनीकों के बीच भी रेडियो का आकर्षण आज तक कम नहीं हुआ और ना कभी होगा।

श्रोताओं, आज जब जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, तब भी रेडियो हमें कुछ पल ठहर कर सुनने, सोचने और मुस्कुराने का अवसर देता है। ये हमारी लोक परंपराओं का सशक्त वाहक है। आकाशवाणी जैसे मंचों ने दशकों से विश्वसनीय समाचार, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, साहित्य, संगीत और लोक संस्कृति को घर घर तक पहुंचाकर समाज को जागरूक और समृद्ध बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये सचमुच जन जन की आवाज़ है, आपकी और हमारी आवाज़ है।

श्रोताओं, रेडियो हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा संवाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से होता है। जब शब्दों में आत्मीयता हो तो वे सीधे दिल तक पहुंचते हैं। आज के डिजिटल दौर में रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से इसकी पहुंच और भी व्यापक हो गई है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी वही है, सरल, सच्ची और संवेदनशील।

शब्द जब सुरों से मिलते हैं तो एहसास बन जाते हैं, और जब ये रेडियो की आवाज़ बनते हैं तो लाखों दिलों की धड़कन बन जाते हैं। रेडियो केवल एक माध्यम नहीं, यह यादों का कारवां है, विश्वास का नाम है और अपनत्व का संदेश है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से महिमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी इंदौर है। अब पेश है लोक संगीत, इसमें आज के कलाकार हैं बलराम देवीलाल जाटव। आइए इनसे सुनते हैं मालवी लोक भजन।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लोक संगीत के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं बलराम देवीलाल जाटव के गाए मालवी लोक भजन।
2: आज जिस कारण ढूंढत फिरे सोहे घटके माय, भरम का पर्दा

लोक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बलराम देवीलाल जाटव के गाए मालवी लोक भजन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
2: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इम्प्रूव होगी और हमारी वेलबींग इम्प्रूव होगी, हमारे एक्शंस इम्प्रूव होंगे तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
1: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही धुरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
2: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेज वांट जो बोलते हैं
1: जी,
2: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
1: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
2: बिल्कुल,
1: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
2: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम

0: और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइज की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ न कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ न कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का एमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का एमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम x 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हरेक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहाँ पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं?
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घरों में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकिलिंग के लिए दें।

0: युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
1: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अपर मिडिल क्लास बोलते हैं उसके ऊपर फिर जो इलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
0: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके।
1: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं।
0: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
1: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
0: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते
1: हैं, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
0: जी।
1: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
0: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
1: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमीडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है उससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
0: जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है, जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
0: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
1: 100% मैम, तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है, तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
0: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
1: तो जब भी हम लोग माइंड और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
0: जी।
1: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ, तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है, तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो, ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड डिसाइड करे
0: जी
1: कि वो सैकड़ों

0: ये कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहाँ जहाँ अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है। वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहाँ अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशन हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रैवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है, क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए, ई एनवायरमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं,
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डी क्लटरिंग जैसे आप कह रहे हैं कि जब डी क्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाए, माइंडसेट अपनाए, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाए ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है। इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपने अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कॉम्पोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और इस पे फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान योगदान करें, ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जसराज का गायन। राग है भिन्न षडज।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी, आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। धार जिले में इन दिनों खेतों में खूब रौनक दिखाई

दे रही है। किसान खरीफ की फसलों की बोनी में पूरी तरह जुटे हैं। इस साल जिले में 5,15,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा रकबे में सोयाबीन, कपास और मक्का बोया जा रहा है। अब तक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। हालांकि निमाड़ के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण किसानों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। खेतों की हलचल के बीच गांव में रोजगार की नई उम्मीद भी जागी है। तिरला में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में लोगों को 125 दिन की रोजगार गारंटी और डिजिटल भुगतान जैसी नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय भी बताए गए। दूसरी ओर किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए कोशिश भी तेज हुई है। मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव धार पहुंचे और सहकारी बैंक के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और नए सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर बैंक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जिले में प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका पर जोर दिया। अब चलते हैं पीथमपुर, जहां उद्योगों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पीथमपुर में ल्यूकोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पीथमपुर की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। यहां बन रहे पीएम मित्रा पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है। अनुमान है कि इससे 46,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों ने विकास कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब बात सेहत की। धार जिले में पल्स पोलियो अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया गया। 5 साल तक के 3,40,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। इसके लिए जिले भर में 2,500 से ज्यादा बूथ बनाए गए थे। हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंचकर अभियान को सफल बनाया। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई। धार में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। 48 युवाओं को मौके पर ही नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत जिले के 471 हितग्राहियों के खातों में 10,31,00,000 रूपये से ज्यादा की राशि भेजी गई। ये सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचाई गई। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता से जुड़े मामलों में लोगों को यह मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धार जिले में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। प्रदेश भर के साथ धार जिले में भी 13 जुलाई से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यह अभियान दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य से चलाया जा रहा है। 3-4 पशु रखने वाले पशुपालकों से विभागीय टीमें संपर्क करेंगी और पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और पोषण की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक किया जा सकता है। जिला स्तरीय क्विज का आयोजन 7 अगस्त को होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले वर्ष इस क्विज में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल बचाने की मुहिम भी रंग ला रही है। वन विभाग ने 7 वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 590 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसी बीच जमीन पर सागौन के पौधे लगाए जाएंगे। और आखिर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर। अब धार जिले में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू कर दिया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए सजीव पुनन प्रोग्राम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन और मैं हूं महिमा आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में। आज 11 जुलाई है यानी विश्व जनसंख्या दिवस है। यह दिन हमें

0: केवल बढ़ती जनसंख्या के आंकड़ों की याद नहीं दिलाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि यदि जनसंख्या के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर और संसाधनों का संतुलित विकास हो, तभी एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण संभव हो पाता है। तो इसी सकारात्मक सोच और सुंदर संदेश के साथ आज के इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं। आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यार भरी बातें और ढेर सारी फरमाइशें हमारा इंतजार कर रही हैं। और हम आपको फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। तो लेते हैं पहला फ़ोन कॉल। हेलो, MH हॉटलाइन। कौन बोल रही है, नाम बताएं अपना।
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ सागर से।
0: सागर से
1: जी।
0: जी नंदिनी जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। बताएं कौन सा गीत सुनेंगी आज।
1: मूवी का नाम है जुड़वा और सॉन्ग है टंटनाटन संगम तारा।
0: अच्छा, गीत के बोल बोलते ही आपको हंसी आ गई, ऐसा क्यों?
1: क्योंकि मतलब अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? डांस करते उस गाने पे?
1: हाँ, कभी
0: कभी
1: करते हैं और सॉन्ग भी मतलब अच्छा है ना।
0: हाँ, कौन से कार्यक्रम सुनते
1: हैं? का बोला तो हंसी तो मैं हमेशा ही हूँ।
0: हाँ, तो अच्छी बात है ना, खुश तो रहना ही चाहिए। अच्छा ये बताइए, और कौन से कार्यक्रम सुनते हैं इंदौर आकाशवाणी के?
1: इंदौर से भी फिलहाल तो लाइव प्रोग्राम ही सुनते हैं।
0: तो MH हॉटलाइन प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है आपको?
1: जी।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत आपके लिए भेज रहे हैं, सुनिए।

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो हेलो, जय माता की। बोलिए, कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशुमेल बुगला।
0: जयपुर से बात कर रहे हैं पूरन जी।
1: जी मैडम।
0: हाँ, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। बताइए आज कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा कसूर और उसमें एक गाना है कल रात हो गई थी, ये गाना।
0: कसूर फिल्म का गीत सुनेंगे।
1: जी मैडम।
0: क्या करते हैं पूरन जी जयपुर में आप?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं। मम्मी पापा है वो खेती बाड़ी करते हैं। मैं तो घर पे रहता हूँ, वो अभी बाजरा की फसल लगाई थी, नौ दिन की हो गई मैडम, पिछला शुक्रवार को लगाई थी।
0: अच्छा अच्छा, और बारिश कैसा है वहाँ पर?
1: बारिश कम ही है मैडम, इस टाइम थोड़ी बहुत हुई थी बारिश, बारिश एक बार हुई तो उसी में फसल बहुत ही, फिर अब नहीं हुई बारिश।
0: हाँ, तो फसल की बुआई कर दी आपने, बाजरा उगाया है।
1: जी मैडम।
0: और बताएं आकाशवाणी इंदौर के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं वहाँ पर?
1: जी मैडम, मोबाइल ऐप पे तो हमारा कार्यक्रम ये मान लो चलता रहता है, क्योंकि न्यूज AIR ऐप के माध्यम से तो खेती बाड़ी से कार्यक्रम हो गया, जानकारी भरा डॉक्टर वाला हो गया, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जो हम छूट जाता है, क्योंकि रेडियो का माध्यम है जो हम घर बैठे जानकारी प्राप्त हो जाती है मैडम।
0: नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, रेडियो बहुत सशक्त माध्यम है, बहुत तरह की जानकारियाँ हमारी रेडियो से मिलती रहती हैं हमारे श्रोताओं को। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर। इस वक्त आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। तो बने रहिए 11 बजे तक हमारे साथ इस कार्यक्रम में। लेते हैं अगला फ़ोन कॉल। हेलो हेलो
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? अनिल जी नमस्कार, बताइए कौन सा कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आज हमको गीत सुनना है नारायण की आवाज से।
0: फिल्म का नाम?
1: दिन वो बड़े
0: फिल्म का नाम एक बार फिर बोले।
1: राज
0: फिल्म का गीत
1: उदित नारायण
0: हाँ हाँ हम आपको गीत तो सुनवाएंगे। बताइए वहाँ पर आजकल क्या कर रहे हैं आप?
1: आपको तो पता है कि हम नौकरी करते हैं।
0: हाँ, आप नेटवर्क से बाहर हैं क्या? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है आकाशवाणी इंदौर से। लेते हैं अगले श्रोता, कौन है देखते हैं। हेलो।
1: हाँ हेलो मैम।
0: हेलो नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम हीरू पड़ियार।
0: हीरू पड़ियार कहाँ से बोल रही हैं?
1: जिला धार।
0: धार से बोल रही हैं?
1: हाँ, हमारी बहनों से बात कर लो। आया सावन झूम के गाना दी।
0: आया सावन झूम के फिल्म का गाना सुनेंगी आज?
1: हाँ, मेरी बहनों से बात कर लो, हमारी बहनों से।
0: अच्छा, पहले आपसे तो बात कर लें। आया सावन झूम के, आपने सावन को बड़ी जल्दी बुला लिया।
1: हाँ, तो अभी समझना में लग
0: रहा है, बस लगने वाला है सावन। हाँ, गीत कौन? हाँ, गीत के बोल क्या, आया सावन झूम के।
1: हाँ मैम।
0: क्या करते हैं धार? हाँ, में आप
1: धार हमारे कई छोटी मोटी दुकान करते हैं मैम।
0: अच्छा, दुकान पे रेडियो चला रखा है? रेडियो सेट लगा के सुनते रहते हैं? हमेशा सुनते हैं, बहुत अच्छी बात।
1: बात कर लो।
0: हाँ हाँ, बात करवाइए।
1: हेलो मैम। हेलो मैम।
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: नाम बताएं अपना।
1: मेरा रितिका पड़ियार।
0: रितिका, आप भी बैठ के रेडियो सुन रहे हैं वहाँ पर? और कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप आकाशवाणी इंदौर के?
1: भक्ति संगीत। युग्यौन। खेती गृहस्थी।
0: अच्छा, पीछे से कोई बोल रहा है, आवाज आ रही है। वो सब प्रोग्राम्स आपको याद दिला रहे हैं वो?
1: मैं पहली बार बात कर रही हूँ इसके लिए। मेरे को
0: अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो आज सबकी आपकी पसंद एक ही है, आया सावन झूम के फिल्म का गीत?
1: हाँ, ये वाला सुनना है।
0: हाँ, चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन प्रोग्राम। हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन।
1: जी
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगी आज?
1: फिल्म का नाम है आई मिलन की रात,
0: आई
1: और
0: मिलन की रात का बोल बताएं।
1: सावन का महीना आया कटा से बरसा है पानी,
0: क्या
1: ये
0: बात है,
1: वाला।
0: सावन का इंतजार सबको है और देखिए लगातार सावन के गीतों की फरमाइश शुरू हो गई है यहाँ पर, है ना? और क्या
1: जी
0: करती हैं जीनत जी, आप बताइए।
1: हाउस वाइफ हूँ मैम। जी
0: अच्छा, रेडियो सुनती रहती हैं?
1: रेडियो चलते ही रहता है।
0: आज विश्व जनसंख्या दिवस है, क्या बोलना चाहेंगी इस पर?
1: यही बोलना चाहूंगी कि बस बच्चे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे
0: हाँ,
1: वही सर। जी
0: तो इस पे कंट्रोल रखें, है ना?
1: कंट्रोल रखें, मेरे तो 3 लड़के हैं,
0: हाँ,
1: उसके बाद कंट्रोल।
0: तो विश्व जनसंख्या दिवस आज है और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
1: बहुत
0: और भारत
1: बहुत ज्यादा
0: दुनिया।
1: बढ़ गई है जैसे, तो फिर भी कम करने लग गए, नहीं तो पहले के बच्चे तो जिनके हैं उनसे 10 12 15।
0: हाँ, लगभग 1.5 अरब के आसपास पहुंच चुकी है हमारे भारत की जनसंख्या और बहुत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है भारत। तो थोड़ा सा सबको संदेश यही कि जनसंख्या पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आगे आने वाले समय में देखिए पेड़ पौधे भी कम हो रहे हैं, है ना? खाद्य सामग्री की भी कमी ना हो जाए, तो बहुत सी चीज़ों को देखते हुए।
1: महंगाई भी है, बढ़ती
0: महंगाई भी बढ़ती जा रही है जनसंख्या
1: जा
0: के
1: रही है।
0: कारण। बहुत सारे कारण होते हैं ऐसे जिनके
1: बच्चों
0: दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। तो
1: में तो परवरिश भी अच्छी होती है उनकी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, कम बच्चे होंगे तो बहुत अच्छे से हम उनको परवरिश दे पाएंगे।
1: सही है मैम।
0: चलिए, आपकी पसंद का जीनत जी, आपकी पसंद का गीत आपके लिए भेज रहे हैं, सुनिए।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: जी नमस्कार मैम। मैम
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: श्यामलाल कटीरिया बोल रहा हूँ, मंदसौर जिले। हाँ
0: श्यामलाल जी, मंदसौर जिले से बोल रहे हैं।
1: मंदसौर जिले से बोल रहा
0: क्या हाल चाल है वहाँ गर्मी के?

0: बारिश शुरू हो गई है।
1: बारिश पूरी हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है जोर जोर से। हाँ
0: थोड़ी थोड़ी हवा की आवाज हमें भी आ रही है।
1: मतलब 2-3 दिन से काफी जोर से चल रही है।
0: हाँ अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बताएं आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: वो मनोज कुमार की जो फिल्म है ना पूरब पश्चिम,
0: जी पूरब और पश्चिम ना।
1: हाँ उसमें वो गाना है बरखा ऐसा तो के याद पूर्वा सुहानी आई।
0: पूर्वा सुहानी आई।
1: हाँ
0: अच्छा तो ठंडी हवा चल रही है तो गाना भी आपको ऐसा ही याद आ गया।
1: हाँ ऐसा ही याद आ गया आज। मतलब बहुत पुराना गीत है और कई मतलब सुनने में
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छा
1: कम
0: गीत
1: आता
0: है ये। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें हैं इस गीत में
1: है।
0: और संतोष आनंद जी ने गीत लिखा है।
1: हाँ
0: और
1: और कई सालों से सुनने में नहीं आया है।
0: हाँ कई गीत ऐसे होते हैं जो बहुत कम बजते हैं और बहुत कम सुनाई देते हैं, तो हमें भी
1: हाँ
0: बड़ी खुशी होती है कि हमारे श्रोता जो हैं
1: नए
0: कई
1: गाने
0: बार,
1: सुन रहे।
0: हाँ अलग अलग तरह के नए नए गीत लेकर आते हैं और
1: हाँ
0: आपके माध्यम से सभी लोग इस गीतों को सुनते हैं।
1: सुनते हैं और
0: हाँ
1: थोड़ी जागरूकता ही बढ़ती है। हाँ
0: बिल्कुल।
1: गीतों के प्रति।
0: हाँ तो चलिए श्यामलाल जी आपकी पसंद का गीत आपके लिए भेज रहे हैं मंदसौर में, सुनिए।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: गोविंद जलोदिया खातेगांव।
0: गोविंद जलोदिया जी खातेगांव से बोल रहे हैं। हाँ, स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गीत और कौन सी फिल्म का।
1: सर मौसम के हिसाब से सर जो है वो मतलब जो है बरसात के चेर का गाना है। हवा में उड़ता जाए।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गीत है ये लता जी की आवाज में। और आज लगभग सभी गीत ऐसे ही हैं मौसम को लेकर, हमारे श्रोताओं ने पसंद किए हैं। कुछ सावन के गीत हुए, कुछ हवा की बात हुई, और वहाँ का कैसा मौसम है वहाँ पर, हवा चल रही है।
1: मौसम बस, हाँ मौसम वहाँ यहाँ का ऐसा ही है बस, ये मतलब
0: बारिश हो रही है कि नहीं।
1: हाँ नहीं, सूरज नहीं दिख रहा है।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ बस पानी का कल से ही बहुत खराब चल रहा
0: है। बारिश कितनी हो गई अभी तक?
1: बारिश अभी ये तो कोई अंदाज नहीं है अपने को।
0: पर अच्छा ठंडा मौसम हो गया वहाँ पर।
1: बहुत ठंडा हो गया, कूलर बंद हो गए, पंखे बंद हो गए।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया, अच्छी ठंडक हो गई। और इंदौर से कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: सब इंदौर से ज्यादातर आपके इंदौर ये चल यही सुनता हूँ ज्यादातर तो। और सब फिर रिलीज हो जाते
0: हैं फरमाइशी फिल्मी गीत।
1: वैसे 2:30 से 3 का जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया है।
0: हाँ
1: हाँ, सर बीज भारती के सभी प्रोग्राम
0: सभी कार्यक्रम जी। तो चलिए सभी का
1: 6 बजे 5:30 से 6 बजे का भी बहुत बढ़िया है।
0: हाँ चलिए, आप सभी कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो MH हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो, नमस्ते महिमा जी।
0: नमस्ते, भंडारी जी की आवाज लग रही है।

0: होगा, बारिश हो रही होगी।
1: टप टप आवाज आती होगी थोड़ी,
0: बिल्कुल नहीं, टप टप आवाज तो नहीं आती है स्टूडियो में, लेकिन बीच बीच में हम लोग जाकर देख लेते हैं कि मौसम कैसा है।
1: अच्छा लगता है मौसम का।
0: हाँ बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: उमा देवी की याद में फिल्म दर्लक का गीत।
0: अरे वाह, बहुत पुराने गीतों की फरमाइश करते हैं आप। और उमा देवी का तो आज देखिए जन्मदिन भी है, 11 जुलाई को।
1: 1954 की फिल्म है मैडम।
0: अफसाना फिल्म, कौन सी
1: अफसाना?
0: ना अफसाना में उनका बेहद प्रसिद्ध गीत है, अफसाना लिख रही हूँ।
1: बहुत जोरदार गाना चला है, आज तक के गाना 7 साल हो गए, गाना सुनते हैं हमको पुरानी याद ताजा होती
0: है। हाँ ये गीत ऐसा है जो उन्हीं पर फिल्माया है और उन्हीं की आवाज में ये गीत है।
1: पहले गाना फिल्म में काम किया, बाद में फिल्म में काम किया, चुनतू के नाम से।
0: हाँ बिल्कुल, और इसके पीछे भी एक कहानी है शायद कि टुनटुन नामक, मतलब एक फिल्म थी कोई, बाबुल है ना, उसमें उनको ये किरदार मिला था और तब से उनकी पहचान बन गई थी।
1: ये नाम दिलीप कुमार रखा था मैडम।
0: अच्छा दिलीप साहब ने उनका नाम रखा था।
1: टुनटुन रखा था। और उसके साथ उन्होंने काम किया था बाबुल में, पहली
0: हाँ पहली फिल्म में, और उसके बाद तो लगभग उन्होंने 200 फिल्मों में काम किया। हाँ 200-250 फिल्मों में उन्होंने हास्य कलाकार के रूप में काम किया।
1: और अपना नाम हास्य कॉमेडी में उन्हें शामिल किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी हास्य कलाकार थी उमा देवी, जिन्हें हम बाद में टुनटुन के नाम से जानते हैं।
1: खास बात तो उनकी आंखें और उनका तो झूम झूम के,
0: हाँ झूम झूम के बोलना, ये उनका एक अलग ही स्टाइल था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उमा देवी के बारे में इतनी सारी बातें साझा करने के लिए अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्कार दीदी। दीदी
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: सारनाथ वाराणसी से। बाबूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। मैं शॉर्ट लाइन में, बताइए।
1: धन्यवाद दीदी आपको।
0: हाँ बताएं, क्या करते हैं वहाँ पर?
1: दीदी मेरी दुकान है जनरल स्टोर की सारनाथ में।
0: अच्छा, तो दुकान पे आपने रेडियो सेट रख रखा है अपना?
1: जी जी
0: और पूरा दिन चलता रहता है।
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छा साथी है रेडियो। देखिए, कहीं भी लगा लीजिए और सुनते रहिए उसको साथ में।

0: आपका काम भी होता रहता है।
1: हाँ, कभी भी काम में डिस्टर्ब नहीं होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गीत सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: दीदी आज हमको सुनवा दीजिए, जुर्माना फिल्म का गाना है, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया गीत है। और बस देखिए, सावन भी आने को ही है, नज़दीक है, और हम चारों तरफ झूले पड़े हुए भी देखेंगे। पर आपने बहुत अच्छा गीत
1: तो
0: चुना
1: दीदी
0: है।
1: दो तीन दिन से बारिश हो रही है, तो ऐसे ही मौसम बढ़िया हो गया है,
0: बहुत अच्छा हो गया है ना, बारिश के बाद तो मौसम
1: और
0: इतना।
1: गंगा जी के किनारे तो बैठने में बहुत आनंद इस समय आ रहा है।
0: हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। आप वहाँ से बोल रहे हो और हम उसका क्या कहते हैं, यहाँ पर एहसास कर रहे हैं उस चीज का।
1: जी
0: हाँ, कि गंगा के किनारे हम भी बैठे हैं और मधुर धुने सुन रहे हैं। और बताएं, जल स्तर कैसा बढ़ गया है वहाँ पर?
1: दीदी अभी जल स्तर ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है।
0: चलिए,
1: लेकिन अभी सुबह शाम बैठने में अच्छा लगता है।
0: हाँ बहुत अच्छा लगता है। गंगा का किनारा तो यूं भी बहुत पवित्र है और इतनी सुंदर जगह है कि बैठा रहता है, लगता है घंटों बैठे रहिए वहाँ
1: दीदी
0: पर।
1: यहाँ क्योंकि पूरे घाट पक्के हैं, 84 घाट यहाँ बने हुए हैं, और सभी पक्के हैं, तो किसी घाट बैठेंगे तो आपको आनंद मिलेगा।
0: बिल्कुल, आप वहाँ से बोल रहे हैं उसमें ही हमको आनंद मिल रहा है। सोचिए कि हमारी इमेजिनेशन कैसे काम कर रही है कि आप
1: जी,
0: बात
1: जी,
0: कर रहे
1: जी।
0: हैं और हम वहाँ तक पहुँच भी गए। तो चलिए,
1: और दीदी दो लाइनें भी कहना चाहूँगा।
0: बिल्कुल कहिए।
1: कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा नाम शमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ।
0: वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ आपने बोलिए। और बाबूजी आपके लिए ये गीत पेश है, भेज रहे हैं आपके लिए बनारस में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो,
1: श्रीनिवास बोल रहा हूँ।
0: श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत हाँ। इस कार्यक्रम में बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज? एक दिल सौ अफसाने। ये फिल्म का नाम है, बोल बताएं कौन सा?
1: मेरे जीवन में।
0: अच्छा अच्छा, तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत है। बहुत पसंद करते हैं पुराने गीतों को?
1: बोल पसंद करता हूँ।
0: अच्छा, और कौन से कार्यक्रम सुनते हैं इंदौर आकाशवाणी के? आपका पत्र और मन भावन, चॉइस टाइम, फरमाइशी फिल्मी गानों के प्रोग्राम सुनते हैं आप ज्यादा? तो अभी
1: आपका बड़े में नाम मिला था, आमिर शमी किया।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो
0: हाँ हाँ। तो चलिए श्रीनिवास जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था हमारा आज का MH हॉटलाइन प्रोग्राम. इस प्रोग्राम से महिमा को दीजिए अनुमति. नमस्कार.
1: हेलो MH हॉटलाइन.
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन. थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा.
2: द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म से लिया है, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने. मनोज मुंतशिर के बोल हैं, संगीत अमाल मलिक का.

अगला गीत बॉडीगार्ड फिल्म से लिया है, जिसे गाया राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा, संगीत हिमेश रेशमिया का।

अगला गीत हर्षदीप कौर ने गाया है, इनका साथ दिया अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और जैम का संगीत, फिल्म है रईस।

दम लगा के हईशा, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है पद्मावत फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी हैं श्रेया घोषाल और स्वरूप खान ने। AM तुराज का गीत है, संगीत संजय लीला भंसाली का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं। शब्द रचना समीर की है, संगीत तैयार किया नदीम श्रवण ने, फिल्म का नाम धड़कन।

कार्यक्रम का अगला गीत तुम बिन फिल्म से है। निखिल विनय का संगीत है, फैज़ अनवर ने इस गीत को लिखा। आवाज़ें सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल।

0: राजनीति फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार का दौरा करेंगे। वे यहां आयोजित एक कार्यक्रम से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। राज्य सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला लिया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। प्रदेश के जेल विभाग स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। और प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कटी पतंग फिल्म का गीत, जिसे गाया किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का है और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। सुनना चाह छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इसी गीत की फरमाइश भेजी सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजताबा खान, राव भाई शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

अगला गीत इन सभी श्रोताओं की पसंद का है। छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया। सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद डोडवानी, श्रेया पूनम वाधवानी और समस्त माखीजा परिवार ने। इन श्रोताओं की पसंद है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया धरती फिल्म का गीत, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत दिया, फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी। सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से ये पत्र आया, मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और समस्त राजावत परिवार ने।

कार्यक्रम का अगला गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। सपना संगीता रोड इंदौर से पतराया लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया का। इन श्रोताओं की पसंद है लता मंगेशकर का गाया आन मिलो सजना फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं हीर रांझा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया मदन मोहन ने। सुनना चाहे कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने। घंटाघर चौक खंडवा से ये पत्र हम तक पहुंचाया संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। एक थानेदार साहब थे, रिटायर्ड थानेदार, यानो सर्विस से फुर्सत हो गए थे और बड़ा मजा ले रहे थे घर में रिटायरमेंट का, बाल बच्चों के साथ बड़ा आनंद ले रहे थे। एक बड़ी बढ़िया सी बात यह है उन थानेदार में कि उनको संगीत का बड़ा शौक था, बड़े प्यारे गाना वाना सुनते थे, रोज आकाशवाणी सुने, दिन भर फिल्मी गाने सुने, गजलें सुने, लोक संगीत सुने, बड़े शौकीन संगीत के। उनको एक दिन कुछ ऐसा लगा कि एक नौकर रख लिया जाए घर में जो मेरी मदद करे, घर के दूसरे काम काज भी करे। ठीक है साहब, पेपर में एक विज्ञापन निकलवा दिया गया कि एक कर्मचारी की आवश्यकता है, मिलिए। उन्होंने थानेदार साहब ने अपना पता उस पेपर में दे दिया। अब एक गोपाल नाम का व्यक्ति उस अखबार को, उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के, विज्ञापन को पढ़ के उनके घर पहुंचा। जब घर तो पहुंचा, वार्तालाप शुरू हो गई। कहले कहिए, कहले थानेदार साहब नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है और आपका विज्ञापन पढ़ के मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ। कहले ठीक है, आप हमारे यहाँ काम करने आए हैं, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम थानेदार रहे हैं पहले, और उधम हमारे घर में उधम नहीं करिएगा, वो चोरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पुराना थानेदार हूँ। तो गोपाल बोलता साहब हमने आज तक चोरी नहीं की, हमने तो झूठ भी नहीं बोला, चोरी भी नहीं की, आप चिंताओं से मुक्त रहें, आप हमको अपने घर में बस सर्विस में सेवा में ले लें बस। तो थानेदार साहब बोलते ठीक है, आप आओ नौकरी में, कल से आ जाओ आप। लेकिन बात यह है कि हम हैं संगीत के शौकीन, वो बहुत ज्यादा संगीत के शौकीन हैं, बस हमको 24 घंटे एक ही नशा रहता है संगीत का। आकाशवाणी हम दिन भर सुनते हैं और जब जब समय मिलता है हम दूरदर्शन देखते हैं, उसमें भी गाने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे भजन आते हैं। है कहले ठीक है साहब, जो आप देखते वो हम भी देखेंगे। नहीं नहीं, तुमको तो काम करना होगा, देखने का समय सिर्फ हमारे पास है। है चलो ठीक है, तो शर्त यह रहेगी हमारे आपके बीच में मिस्टर गोपाल के, जैसे कोई आ रहा है हमारे घर में तो तुमसे हम बोलेंगे भाई कौन आया, जरा दरवाजे पे जाओ, तो तुम उसको देखना और हमको गाना गा के बताना कि वो कौन आया है। यानी समझाने थानेदार साहब, ओहो क्या उसमें समझाना, कोई आ रहा है हमको गाना गा के बताओ कि वो कौन आया है। अगर हमने कोई चीज तुमसे घर में बुलवाई है, ये ले आओ वो ले आओ, तो तुम सब गाना गा के गाना गाते गाते आओ, फिर हमको दो, समझ गए। तो गोपाल थोड़ा सा समझ गया, थोड़ा नहीं समझा, उसने हल्का सा झूठ बोल दिया, कहा अरे बिल्कुल साहब, अरे वाह वाह थानेदार साहब, बड़ा छोटा सा आपने छोटी सी बात कही है, गाना गा के बात करने की है ना, कोई आ रहा है गाना गा के बताओ, कोई जा रहा है गाना गा के बताओ, आप चिंताओं से मुक्त रहे थानेदार साहब। अरे हम तो संगीत जानते हैं, हमने 5 साल 7 साल शास्त्रीय संगीत सीखा है। अरे फिर तो गोपाल बहुत अच्छी बात है, कल से तुम्हारी सर्विस पक्की, 15 दिन महीने भर काम करो, उसके बाद तुम्हारी तनख्वाह के बारे में विचार किया जाएगा। ठीक है साहब, इस तरह से एक दिन तो निकल गया। दूसरे दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया तो थानेदार साहब ने गोपाल को बोला, अरे गोपाल, अरे जरा देखना भाई दरवाजे पे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जरा देखो भाई कौन आया है। जी थानेदार साहब, जा रहा हूं आ रहा हूं। उसने दरवाजा खोला, जो सज्जन थे उनको देखा, अब बता रहा है वो थानेदार को कौन गोपाल की कौन आया है, किस तरह से गाना गा के।

उसको बोलो गोपाल कि वो बाद में आएगा, अभी कुछ मूड नहीं है पैसे वैसे का देने का। हम उसका पैसा दे देंगे, रुपया चार रुपया पांच रुपया कोई बात नहीं है। अभी उससे बोलो अभी जाए, अभी हम पेपर पढ़ रहे हैं, चाय कॉफी लेना, नाश्ता लेना। ठीक साहब, गाना गा के एक दिन तो निकल गया, दो दिन निकल गया, चार दिन निकल गया। अचानक माहौल होली का आया, होली के माहौल में थानेदार साहब कुछ उल्टा सीधा कुछ खा पी के कहीं से आ गए थे, तो उसी खाने पीने के चक्कर में वो रात को आके घर में सो गए, और न जाने कहां से कोई अंगार चिंगारी कोई कहीं से भड़की, कुछ क्या इत्तफाक हुआ, थानेदार साहब के मकान में लग गई आग। तो सबसे पहले जो धुआं था वो गोपाल की नाक में पहुंचा, उसके कमरे में पहुंचा, वो घबरा गया, समझ गया कि ये चारों तरफ लगता है आग लग गई है। और वो दौड़ता भागता थानेदार साहब के दरवाजे पे, यानी उनके कमरे के दरवाजे पे पहुंचता है और आवाज लगाता है, लेकिन घबरा भी यही जाता है कि कहीं अगर मैंने गाना गा के नहीं बताया तो मेरी नौकरी ना छूट जाए। तो पहले तो खैर सादे तरीके से चिल्ला रहा है, किस तरह से, अरे थानेदार साहब, अरे थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, थानेदार साहब, थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, अरे आपके घर में आग लग गई है थानेदार साहब। तो थानेदार साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला, गोपाल सामने, थानेदार सामने, गोपाल घबरा गया। थानेदार ने बोला, अरे क्या बात है गोपाल, हम तो सो रहे थे भाई, मेरे को ओफो काय को जगा दिया गोपाल। तो गोपाल अपनी सर्विस के चक्कर में गाना गा के बता रहा है आग लगने का, किस तरह से,

छोटे छोटे कलाकार, एक सपना हमारे दिल दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि हम बड़े बड़े शहरों में जाएं, शहर में जाएं, शहर से बाहर जाएं, देश में जाएं, देश से बाहर जाएं, हमारे कार्यक्रम हों, लोग हमको सुने, रेडियो स्टेशन वाले हमें बुलाएं, हैं टेलीविजन वाले हमें बुलाएं। ये तो खैर ठीक ठीक है, फिल्मी दुनिया में हमारे गाने हों, फिल्मों से के माध्यम से अब कोई हीरो एक्टिंग कर रहा है हीरोइन के साथ, उसके बैकग्राउंड में उसके प्लेबैक में हमारी आवाज़ हो, ऐसे सपने तो खैर सभी लोग देखते हैं, खास करके मैंने ज़रूर देखे, एक बार नहीं सैकड़ों बार। और उस सपने को पूरा करने के लिए पहुँच गया फिल्मी दुनिया में बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद यानी मुंबई जाने के बाद मैंने कुछ पता लगाया कि भाई यहाँ किसको आवश्यकता है नए गायक कलाकार की। चलिए साहब, मालूम तो हो गया, एक डायरेक्टर साहब के घर पहुंचा, निवेदन प्रार्थना की कि साहब 10-5 मिनट का वक्त दे दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा गायक कलाकार हूँ, अपने इलाके का बहुत बढ़िया गायक हूँ, सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, जब भी मैंने अपने महल्ले में अपने इलाके में गाना गाया है किसी ने फूल माला पहनाई है, किसी ने चाय पिलाई है, किसी ने कॉफ़ी पिलाई है, किसी ने आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे मेरे प्रोग्राम छोटे छोटे होते रहते हैं। डायरेक्टर ने बोला भाई ऐसा है, मैं फिल्मी शूटिंग में जा रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, अब आप यहाँ कहाँ आ गए हैं, आप बाद में आइए तो 2-3-4 महीने के बाद। तो मैंने उससे बार बार कहा ऐसा मत करिए साहब, 3-4 महीने के बाद तो मेरे सपने अगर पूरे नहीं हुए तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा, बस 5-10 मिनट दे दीजिए। ठीक है, अब तुम बोलते हो तो 5-10 मिनट दे देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी गाना भाई, मुझे कहीं और जाना है। ठीक है सर, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हारमोनियम तबले वाले मिलेंगे? हाँ, बुला देता हूँ, सब यहीं बैठे हुए हैं। चलो भाई, ढोलक नवाज भाई, तबला नवाज भाई, ऑर्गन वाले भाई, हारमोनियम वाले भाई, सब कलाकार बंधु आ जाओ सर, इसकी मदद कर दो, ये कोई बच्चा आया है नया गाने वाला, तो हाँ चलो शुरू करो। तो सर पुराना गाना सुनाओ। अरे कोई भी गाना सुनाओ यार, पुराना गाना सर, अफसाना वाला।

अफसाना में माँ वहां सब क्या है भाई साहब है? ये कितना अच्छा गाना, अपने जमाने का गाना, इसमें दूसरा गाना तुमने कहाँ से जोड़ दिया है? अगर आपकी तैयारी नहीं तो आपको नहीं आ रहा था। नहीं सर, माफी चाहते हैं सर, क्या है कि मैं 250-300 गाने याद करके आया था सर, अपने जिस गांव में मैं रहता हूँ ना सर, वहां से 250 गाने याद करके आया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डायरी में खो गई सर, रेलवे ट्रेन में सर, वो बस में खो गई सर, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम दूसरा गाना कोई गाओ जो तुमको पूरा आता हो। गाएंगे ना सर, बहुत अच्छा वाला गाना गाएंगे सर, वो चोर चोर वाला गाना गाएंगे। कौन सा चोर चोर वाला? अभी सुनाते सर, वो चोर चोर का शोर मचाकर। हाँ अच्छा सुना, पूरा गाना? नहीं पूरा गाएंगे सर, पूरा गाएंगे। हाँ

बंद करो, ये सब क्या हो रहा भाई है? हमने तुमको जब बोला तरीके से जो गाना पूरा आता हो वो गाओ भाई साहब, मेरा क्यों समय खराब कर रहे हो? मुझे फिल्म की शूटिंग में जाना, हीरो ने हीरोइन ने बहुत मुश्किल से डेट दी है, मेरा क्यों नुकसान करते है भाई साहब, मुझे क्यों परेशान करते? तो वो मेरी मेरे रोने की जगह वो रोने लगा। कौन रो रहा था? डायरेक्टर। मैंने फौरन बोला, नहीं साहब आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ, पुराना वाला गाना गा रहा हूँ साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। अच्छा ठीक है गाओ, लेकिन पूरा आता है ना? बिल्कुल साहब पूरा आता है, मैं आपकी कसम, अरे मेरी कसम मत खाओ भाई साहब, मेरी कसम नहीं सर। अच्छा तो फिर मैं अपनी कसम खा लेता हूँ सर, मेरे को पूरा आता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। तो ये फिल्मी गाना है तो सर, लेकिन भजन है सर, वो भजन का मैं बचपन से बहुत शौकीन रहा हूँ, ये गाना पूरा भजन आपको सुनाऊंगा, देखिए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पहले भजन सुनाना था, नहीं सर अब सुना, पूरा भजन। हाँ गाइए, हाँ सुनाओ सुनाओ। हाँ

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं, अरे इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: राजेश मिश्रा आ रहे हैं कुछ सुनने सुनाने के लिए।
2: अब आइए हम ले चल रहे हैं आपको भिखारी के एक आइटम की ओर, कि जो गरीब भीख मांगते हैं तो उनमें भी हास्य मिल जाता है, वो भी अपना किस प्रकार से आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि आनंद लेना हर किसी को ईश्वर ने दिया है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो वो भी भीख मांगते हुए कैसे आनंद ले रहे हैं, आइए। भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई और वो हम और आपको, बाबू ए बाबू, सुनता ही नहीं है बेवकूफ आदमी।
3: क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा।
2: कहिए क्या बात है?
3: बाबू एक रोटी दे दो।
2: रोटी नहीं है,
3: फटे पुराने कपड़े दे दो बाबू।
2: फटे पुराने कपड़े भी नहीं है
3: बाबू। गेहूं के दाना दे दो बाबू।
2: गेहूं का दाना भी नहीं है।
3: पैसे दे दो बाबू।
2: पैसे भी नहीं है।
3: अच्छा साहब, आपके पास कटोरा है?
2: क्यों
3: बाबू, ऐसा है अगर है क्या?
2: हाँ है,
3: तो फिर यहाँ काहे को बैठे, हमारे साथ चलो।
2: एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले
3: क्या है? कुछ दे दो भगवान भला करेगा।
2: उसने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले?
3: कहले साहब, जो आप कर रहे वही हम करते थे।
0: संजय गायकवाड़, एक मौका फिर इन्हें दिया जाता है, हाँ आपको हंसाने के लिए। संजय हाजिर हो।
4: कितना बदल रहा है साहब जमाना, कितना बदल गया है। जो कल तक होता था वो आज नहीं हो रहा है, जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा। पहले के जमाने में लोग अपने अपने घर के बाहर लिख के रखा करते थे, आइए आपका स्वागत है। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर लिख के रखा करते हैं, कुत्तों से सावधान। पहले के जमाने में होता साहब ये था कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं और दादाजी आते थे, अदब के लिए खांसते थे, तो बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाया करती थी।

आज जमाना इतना बदल गया साहब कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं, दादाजी आए और धोखे से बहू खांस दे, पता चला दादा बाहर। कितना समय बदल गया है, कितनी सारी बातें बदल गई हैं। अब मैं साहब संगीत के ऊपर आ रहा हूँ कि पहले के जमाने में हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुलाता था तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी, हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुला रहा है।

इतना कहता था साहब हीरो पहले, तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी। आज भी हीरो हीरोइन को बुलाता है, देखे साहब आज के जमाने की लिरिक्स क्या लिखी जा रही है। आज के हीरो ने जैसे ही हीरोइन को देखा तुरंत अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया, ए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पाप पाप, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, बताइए चाय भले ही भर जाए। क्या जमाना था साहब, कि पहले के जमाने में हीरोइन चली जा रही है, हीरो तारीफ कर रहा है, तारीफ करने का अंदाज देखिए, तो ये मतवाली चाय।

आज भी हीरोइन जा रही है, आज का हीरो तारीफ कर रहा है हीरोइन की, चलने की तारीफ सुनिएगा। क्या अदा क्या जल बे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जान भी अब जाएगी आंख ना मारो, भैया अरे खा ले लैया, भैया गुड़ की लैया। ये जमाना बदल गया साहब है। पहले के जमाने में क्या बात हुआ करती थी कि शरीर से आंखों को ध्यान में रखते हुए क्या शानदार लिरिक्स लिखी गई।

बाज का हीरो आंखों के लिए क्या बोलता है? अखियों से गोली मारे भाजकिया, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की। अब बताइए साहब, अगर आंखों से गोलियां चलने लगे तो परमाणु परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? इतना समय बदल गया है। अभी क्या बात हुआ करती थी, पहले भी हीरोइन अपने हीरो से प्यार करती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से किस तरीके से व्यक्त करती थी।

0: आज की हीरोइन क्या बोलती है, दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे, तू तो मेरा आशिक मैंने प्यार किया रे दैया भाई।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुनी धारावाहिक हंसना मना है की दसवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इंदौर में आज माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लाहर का दौरा करेंगे। वह यहां आयोजित एक कार्यक्रम से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉक्टर नरोत्तम के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरू किया है। यह प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है। इसमें भील जनजातीय चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी। और प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए मेहनत जरूरी है। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, वर्तमान समय विज्ञान और तकनीक का युग है। आज मानव का जीवन लगभग आधुनिक तकनीकों से प्रभावित हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, उद्योग, संचार, परिवहन तथा सरकारी सेवाओं में डिजिटल तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का तेजी से उपयोग पड़ रहा है। AI ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और मशीनें मनुष्य की तरह सोचने, सीखने, विश्लेषण करने तथा निर्णय लेने के कार्य कर सकती हैं। भारत सरकार भी इस आधुनिक तकनीक को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इसी दिशा में यशोदा AI एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाना है तथा उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त करना है। बहनों, यशोदा AI एक राष्ट्रीय पहल है जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW तथा फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को AI की जानकारी देना, डिजिटल कौशल विकसित करना तथा उन्हें नई तकनीकों का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करना सिखाना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। आज लगभग हर क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवसाय सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यदि महिलाओं को इन तकनीकों की जानकारी नहीं होगी तो वे विकास की मुख्य धारा से पीछे रह जाएंगी। इसलिए यशोदा AI महिलाओं को तकनीक रूप से सक्षम बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं आज भी डिजिटल संस्थानों का सही उपयोग नहीं कर पाती और साइबर

अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा गलत जानकारी का शिकार हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में यशोदा एआई महिलाओं को तकनीक शिक्षा प्रदान कर उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। बहनों, यशोदा एआई के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जैसे कि महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत जानकारी देना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बहनों, यशोदा एआई की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम, सरल भाषा में एआई और डिजिटल तकनीकों की जानकारी, साइबर सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने का प्रयास, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन। बहनों, यशोदा एआई केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। जब महिलाएं तकनीक रूप से सक्षम होंगी, तभी भारत वास्तविक अर्थों में डिजिटल और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसलिए प्रत्येक महिला और छात्रा को यशोदा एआई जैसे पहलों से जुड़कर नई तकनीकों को सीखना चाहिए। बहनों, जीवन हमें हर दिन कुछ नया सीखने, आगे बढ़ने और मुस्कुराकर हर चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। इसी सुंदर भावना को व्यक्त करता है फिल्म डियर जिंदगी का बेहद लोकप्रिय और प्रेरणादायक गीत लव यू जिंदगी, जिसे गाया है जैस्लीन रॉयल ने।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत लव यू जिंदगी, जिसे फिल्म डियर जिंदगी से लिया गया था और इस गाने को जैस्लीन रॉयल ने गाया था। बहनों, आज हमारे साथ हैं साहिल दुबे, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं और एआई रोबोटिक्स में इंजीनियर हैं। तो साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: मैम, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: साहिल जी, आपके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन लाए?
1: मैम, एआई ने मैम महिलाओं के जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और अवसरों से भरपूर बनाया है। इससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यवसाय के नए रास्ते भी खुले हैं। अब मैम महिलाएं घर बैठे भी सीख सकती हैं, काम कर सकती हैं और वो अपना व्यवसाय बढ़ा भी सकती।
2: अच्छा सर, ये मतलब रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में एआई ने महिलाओं के लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हो रही है?
1: इसमें मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि एआई महिलाओं को मैम नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। जैसे कि इसमें वे ऑनलाइन व्यवसाय हो गया या कंटेंट का निर्माण करना, डिजिटल सेवाएं हो गई, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स जैसे अन्य क्षेत्रों में हम कार्य कर रही हैं। एआई उनके काम को तेज, सरल और अधिक प्रभावी बनाती हैं। काम करना वो आसानी से कर सकती हैं। स्मार्ट होम के उपकरण का प्रयोग करना, समय प्रबंधन और बच्चों की पढ़ाई जैसी गतिविधियों पे आसानी से वो नजर रख पा रही हैं। उदाहरण के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वॉइस असिस्टेंट और स्मार्टफोन एप्स कई मैम ऐसे दैनिक कार्य हैं जिनको सरल बना देते हैं वो।
2: अच्छा, ये स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में एआई महिलाओं को किस प्रकार सहायता कर रही है?
1: स्वास्थ्य संबंधित मैम जैसे जानकारी, समय पर जांच और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लेना हो जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। बाकी सुरक्षा के लिए कई सारे मोबाइल ऐप आ गए हैं जो कि आपके आपातकालीन स्थिति में परिवार या पुलिस को तुरंत सूचना भेजने में मदद करते हैं। आजकल सभी स्मार्टफोन में पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से ये रहता है कि हम इमरजेंसी ऐसा कुछ बनाएं कि जिसमें तुरंत एक या दो सिर्फ क्लिक से आप तुरंत आप अपने घर पे स्वास्थ्य संबंधित किसी भी चीज का आप वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं।
2: अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि एआई के बढ़ते उपयोग से महिलाओं के रोजगार पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है?
1: जी हाँ मैम, एआई के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। जहाँ नई तकनीक से नए रोजगार पैदा होंगे, वहीं कुछ पारंपरिक कार्य कम हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को नई तकनीकों और डिजिटल कौशल को सीखते रहना चाहिए हर दिन, ताकि वो बदलते समय के साथ आगे बढ़ सकें और सतर्क रहें हमेशा।
2: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक एआई की सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
1: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैम जैसे कि डिजिटल शिक्षा हो गई, इंटरनेट की सुविधा, जो उनके ग्रामीण की स्थानीय भाषा है उसके बारे में प्रशिक्षण लेना, तकनीकी जागरूकता अभियान हो जैसे हो सकता है, और सरकारी सहायता को बढ़ावा देना चाहिए इन सब चीजों को। इससे क्या होता है, महिलाएं अधिक से अधिक एआई का लाभ उठा सकेंगी।
2: अच्छा सर, जैसे कि एआई का उपयोग करते समय महिलाओं को किन चुनौतियां या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
1: सबसे पहले तो महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित

0: करनी चाहिए, उन्हें अपनी जानकारी किसी से भी साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी जानकारी की सत्यता की जांच पूरी करनी चाहिए मैम, और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क हमेशा रहना चाहिए। किसी के भी बहकावे में या किसी भी ऐसे पोस्टर या बैनर को जो आप बताते हैं कि इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको ये लाभ होगा, इन सब पे वो ना जाएं, किसी भी शॉर्टकट का वो इस्तेमाल ना करें। AI का उपयोग मैम सोच समझ कर और एक जिम्मेदारी के साथ करना बहुत ही आवश्यक है।
1: सर, महिलाओं को AI से जुड़ी नई तकनीकों और कौशलों को सीखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
0: मैम, इसमें यही कहेंगे कि महिलाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दोनों कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा व्यस्त दिनचर्या है उनकी तो वो ऑनलाइन अपना सीख सकती हैं, बाकी अगर हो सके तो वो ऑफलाइन भी जा सकती हैं। डिजिटल कौशल विकसित करना चाहिए उनको हर दिन, नई तकनीकों के बारे में नियमित रूप से सीखना चाहिए हर समय, और व्यवहारिक अभ्यास भी करते रहना चाहिए साथ साथ में। इससे क्या होता है, उनके खुद का भी विकास होता है।
1: सर, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में AI और महिलाओं की भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हैं?
0: मैम, विकसित भारत 2047 के निर्माण में AI और महिलाओं की भूमिका मैम अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यदि मैम महिलाएं AI का प्रभावी और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करेंगी तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि विज्ञान और भी जैसे अन्य क्षेत्रों में वो अपना योगदान देंगे, जरूर देंगे। इससे क्या होगा मैम, देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को मैम एक नई गति मिलेगी, तथा भारत एक मैम सशक्त और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और आगे बढ़ेगा।
1: बहुत अच्छा सर, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, और हमारी श्रोताएं जो सुन रही हैं हमारे कार्यक्रम को, उनको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, भारत आज विकास के एक नए युग की ओर अग्रसर है। देश वर्ष 1947 तक अर्थात स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि ऐसा भारत है जो सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं समाज की आधी आबादी होती हैं और उनके बिना किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए विकसित भारत 2047 का निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बहनों, महिलाएं परिवार और समाज की आधारशिला होती हैं। एक शिक्षित और सशक्त महिला न केवल स्वयं को आगे बढ़ाती है, बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रगति की राह दिखाती है। आज भारत की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, खेल प्रशासन, सेना और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। विकसित भारत के निर्माण में उनका योगदान अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। बहनों, किसी भी देश की प्रगति उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। आज महिलाएं उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, कृषि सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप और स्वरोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, छोटे उद्योगों, हस्तशिल्प, ऑनलाइन व्यवसाय और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहनों, आज विज्ञान और तकनीक का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल तकनीक भविष्य के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बहनों, विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब महिलाएं इस विकास यात्रा की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता भी बनेंगी। शिक्षित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त महिलाएं ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। बहनों, जीवन एक निरंतर यात्रा है। इस यात्रा में हमें अनेक चुनौतियाँ मिलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो इसी सकारात्मक सोच और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है

जो हमें सिखाता है परिस्थितियां कैसी भी हो हमें अपने सपनों और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं फिल्म स्वदेश के प्रेरणादायक गीत यूं ही चला चल, और इस गीत को उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर ने गाया है।

बहनों, अभी हमने सुना गीत यूं ही चला चल, जिसे फिल्म स्वदेश से लिया गया था और इस फिल्म को उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर ने गाया था। बहनों, बरसात का मौसम सभी को पसंद होता है। इस मौसम में वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है तथा प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन बारिश के कारण हवा में नमी बढ़ने से त्वचा विशेषकर चेहरे पर कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे तैली त्वचा, मुहासे से एलर्जी, खुजली और संक्रमण जैसी समस्याएं आम हो जाती है। इसलिए इस मौसम में चेहरे का विशेष देखभाल करना चाहिए। बरसात के मौसम में दिन में 2 से 3 बार हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करना चाहिए। इससे धूल, पसीना और अतिरिक्त तेल हट जाता है तथा त्वचा साफ और ताजा रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बरसात में मॉइस्चराइजर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। त्वचा को मुलायम और स्वस्थ रखने के लिए हल्के पानी आधारित मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए। बहनों, बरसात के दिनों में भी सूर्य की हानिकारक किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना लाभदायक होता है। चेहरे की सुंदरता केवल बाहरी देखभाल से ही नहीं बल्कि अच्छे खान पान से भी बनी रहती है। हरी सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है। नियमित सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, उचित त्वचा देखभाल और स्वच्छता अपनाकर हम अपने चेहरे को स्वस्थ, सुंदर और चमकदार बनाए रख सकते हैं। स्वस्थ त्वचा ही हमारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारती है। बहनों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी।
2: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे, तयार रहा बरं का?
3: मी नाही येऊ शकणार।
2: अरे

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत विकास गीत से। आज के कलाकार हैं कन्हैया लाल शुक्ला। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। पेश है वर्षा गीत, आवाज कन्हैया लाल शुक्ला की।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैयालाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए कहरवा गीत, आवाज कन्हैयालाल शुक्ला की।
1: बने रघुराई हो।

इस गीत कहरवा गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेशे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, क्षमा कीजिए, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गायक कुछ भजन।

0: अभी आपने सुनी सूरदास की रचना, आवाज़ थी ज्योति तिवारी की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे, तयार रहा।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
0: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
1: आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

स्वदेश, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। उदित नारायण, मास्टर विग्नेश, बेबी पूजा की आवाज में, शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत यार रहमान का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, कार्यक्रम है फिल्म संगीत। अब सुनिए, परदेश फिल्म का गीत, सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना है। इंदौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज आयोजित होने वाला माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव युवाओं के लिए नए अवसरों पर संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
1: 2025 को रोजगार और उद्योग वर्ष बनाकर प्रदेश को देश को आगे बढ़ाना है। गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करने की आवश्यकता है। उसी सिलसिले में युवा और खास करके यूथ कॉन्क्लेव का आज का जो आयोजन है, ये हमारे भविष्य के मध्यप्रदेश के साथ आज का मध्यप्रदेश भी मजबूत बने, युवाओं को सब प्रकार का रोजगार मिले, उनके सपनों को पंख लगे, सरकार की योजनाओं के साथ उनको जोड़े और अब एक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने का और बड़े पैमाने पर काम जारी है।
0: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के

0: लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। आज राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भिंड जिले के मुकेश सिंह भदौरिया ने योगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश भर में जिले का नाम रोशन किया। मत्स्याखेट पर लगे प्रतिबंध के बीच मत्स्य पालन विभाग ने नर्मदापुरम जिले के डोंगरवाड़ा और सुहागपुर में कार्रवाई कर 2000 किलो से अधिक मछली जब्त की है। शिवपुरी जिले में पसारा एक्ट 2005 के अंतर्गत सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला रोजगार कार्यालय में भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर ने कल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिले के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन और अपार आईडी बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने

0: कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
1: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें

0: यानी महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की यह बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाईस्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाईस्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
3: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत

0: भारत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कलाकार फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने। शब्द रचना इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं ग्राम महसवाड़ी, तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीना जी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय किरोटकर, मनीष, मृत्युंजय, शिखा, पूनम देवास से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लंबी श्रीवास्तव। इसी गीत के फरमाइश करता है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। तो आइए आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कलाकार से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म अजनबी से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम है कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर राही, सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, सुखी। विश्वकर्मा नगर नागपुर से इसे पसंद किया है शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, श्वेता, सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, परी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का गीत अजनबी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद करने करके भेजने वाले श्रोताओं के नाम है, पसंद अपनी पसंद भेजने वाले श्रोताओं के नाम है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। औरंगाबाद से इस गीत को की फरमाइश मिली है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं MM राजावत राज।

मधु राजावत, राशि राज रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं उनका समस्त परिवार। आप सब ने फरमाइश भेजी है जिस गीत की, बता दें आपको, खुदगर्ज फिल्म का गीत आप लोग सुनना चाहते हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत राजेश रोशन का। तो आइए आप सबकी पसंद का ये गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म खुदगर्ज से। आवाज़ें नितिन मुकेश और साधना सरगम की।

खुद गर्ज इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में, शब्द रचना थी इंदिवर की और संगीत राजेश रोशन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं जिसकी फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम है दत्तरंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगापुर से सालिक पुजारी, भोपाल से कुसुम ज्योति, अर्जुन वर्मा, परी वर्मा, मिष्टी लक्ष्मी, भूपेंद्र वर्मा। करुलाबाद मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, सिंधोली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ की। आप सब सुनना चाहते हैं जब जब फूल खिले फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसे एक बार फिर सुन लीजिए, जब जब फूल खिले फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म जब जब फूल खिले का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम के की अंतिम फरमाइश हमने ली है, जिसे भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा, मुज्ताबा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीनगर अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, गौतमनगर जिला नांदेड़ से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। आप सबकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूती नींव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में भील जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी और प्रदेश में अगले दिन तीन दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम होगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कार भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:01 और 56 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है शाम 5:00। अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैयालाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की रचना से है।

शर्ट सेकंड थी, कत्ती

नमस्कार। मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। इस समय हमारी घड़ी में शाम के 5 बजने के हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करेंगे श्रोताओं यूथ प्रोग्राम युववाणी से।

0: अपना अप्रोच कितना वो हो गया है, क्या है?
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वैष्णवी।
0: और मैं जयति।
1: तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है दिन शनिवार का, और आज के दिन हम अपना एक स्पेशल सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, हेलो फ्रेंड्स, जिसमें आप कॉल करके अपने फरमाइशी गीत हमसे सुन सकते हैं, और हाँ, हमसे ढेर सारी बातें भी कर सकते हैं।
0: आप हमें कॉल कर सकते हैं 0731 2710223 और 2710224 पर।
1: तो दोस्तों, जल्दी से हमें कॉल लगाइए, और जैसे कि हम रोज आपसे दो सवाल पूछते हैं और उनका जवाब हम अपने कार्यक्रम के अंत में आपको देते हैं, तो आज का आपका पहला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, और आपका दूसरा सवाल है
0: दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब हमारे लिए ढूंढ कर रखेंगे। तो वैष्णवी, जब तक के हम हमारे कॉलर से कनेक्ट करते हैं, मैं तुम्हें, हम आपस में बातचीत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो तुम बारिश के लिए अभी क्या कर रही हो?
1: बारिश का मौसम तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी क्योंकि इतनी बारिश नहीं हुई है, तो जिससे तुम भी शायद ये महसूस कर पा रही हो कि गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, इनफैक्ट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
0: तो मुझे लगता है हमारे कॉलर हमसे कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, तो हम लेते हैं हमारे पहले कॉलर को।
2: हेलो जी, हेलो
0: हेलो फ्रेंड्स,
2: हेलो जी, प्रयाग से बोलता हूँ बेटा जी।

0: मुझे लगता है हम कॉलर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तो। वैष्णवी, मुझे ये बताओ कि अगर बारिश तुम्हारी पर्सनालिटी होती तो कैसी होती? शांत सी, रिमझिम सी बारिश होती, या जोरदार तेज बारिश होती, या ऐसी सरप्राइज देने वाली बारिश होती तुम्हारी पर्सनालिटी?
1: आई थिंक सरप्राइज वाली बारिश होती, जो कि कभी एकदम कम या धीमे धीमे चलते रहने वाली, और फिर कभी एकदम तेज और एकदम पूरे टाइम तेज बरसने वाली, जिससे लोग परेशान हो जाते, और कभी बहुत दिनों तक ना दिखने वाली, जैसे कि तुमने बोला आज कि मैं बहुत दिनों से नहीं दिखी। तुम ये बताओ जयति, कि बारिश का नाम सुनते ही तुम्हारे जहन में पहली ऐसी कौन सी याद आती है? वो बचपन की हो सकती है, स्कूल की हो सकती है, दोस्तों की हो सकती है, या कोई ऐसे तुमने ट्रैवल किया हो बारिश में, कोई सुंदर सी जगह, वो हो सकती है।
0: अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो बारिश में मुझे सबसे अच्छी जो याद है कि जब कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती थी हमारे स्कूल टाइम में, तो ये होता था कि बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टी हो जाती थी और स्कूल से मैसेज आता था कि आज जो है स्कूल नहीं लगेगा।
1: हाँ
0: तो स्कूल के लिए जब हम तैयार बैठे होते थे सुबह 7 साढ़े 7 बजे और फिर मैसेज आता था कि आज स्कूल की छुट्टी है, तो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छी मेमोरी होती थी कि आज स्कूल नहीं जाना है, आज घर पे बैठकर दिन भर आराम करेंगे।
1: बढ़िया। और सोच, अगर यही वो स्कूल की छुट्टी वाली बारिश, वही मेमोरी है, वो तुम्हारे लिए एक लेटर की तरह हो बारिश, तो सोच उसमें क्या लिखा होगा।
0: मुझे लगता है कि वो लेटर मुझसे ज़रूर यही कहेगा कि तुम जाओ बाहर घूमो, बारिश में थोड़ा आनंद लो, भुट्टे खाओ, गरम गरम भजिए खाओ। तो मुझे लगता है यही सब होगा इसमें।
2: हेलो जी, हेलो हेलो हेलो।
0: कल हम मनाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। आशा

0: एक ऐसा छोटा सा शब्द, लेकिन इसकी ताकत बहुत ही बड़ी है। यही आशा हमें कठिन समय में आगे बढ़ने का हौसला देती है, नई शुरुआत का विश्वास देती है और ये याद दिलाती है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। आज के तेज रफ्तार जीवन में कभी कभी चुनौतियां हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन आशा हमें ये भरोसा दिलाती है कि हर मुश्किल का एक रास्ता होता है। इसलिए आज का दिन हमें ये संदेश देता है कि हम अपनी उम्मीद बनाए रखें, अपने सपनों पर विश्वास रखें और अपने आसपास के लोगों में भी सकारात्मकता फैलाएं। तो हम सभी, मुझे लगता है, आज एक संकल्प ले सकते हैं कि हम खुद भी आशावादी रहेंगे और अपने शब्दों और व्यवहार से दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की एक नई किरण जगाने की कोशिश करेंगे। तो
1: जयती, जैसे कि हम बारिश पे बात कर रहे थे, मतलब मैंने देखा है कि बहुत लोगों का फेवरेट मौसम होता है ठंड, गर्मी, बारिश, बहुत कुछ होता है। तो अगर तेरा फेवरेट मौसम बारिश है तो उसमें सबसे फेवरेट चीज़ क्या है और सबसे गंदी चीज़ जो तेको इरिटेटिंग लगती है वो क्या है?
0: मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ तो यही होगी कि बारिश में खाने पीने का जो मज़ा रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। और सबसे बुरा मुझे लगता है बारिश में लगने जाने वाला ट्रैफिक जैम और गीले कपड़े, गंदे जूते, मुझे इन सब चीज़ों से सख्त नफरत है और वही बारिश में होती है। तो मैं तो पर्सनली

0: श्रोताओं, चलो हम बात करते हैं 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। हम हर साल 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये दिन सिर्फ वैज्ञानिकों के सम्मान का अवसर नहीं है, बल्कि आम लोगों, खासकर युवाओं और विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व को समझाने और वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा की गई ऐतिहासिक खोज रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है।
1: लेकिन जयति, अभी हमने अपने श्रोताओं को बोला कि वो हमें जल्दी जल्दी फोन करें, फिर हम बारिश की बात करने लगे और तुम ये विज्ञान की बातें क्यों कर रही हो अचानक से?
0: क्योंकि देखो, ऐसा है कि जब तक हम हमारे कॉलर से कनेक्ट करते हैं, तब तक हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे श्रोताओं को थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें देते रहे, ताकि उनके लिए ये प्रोग्राम थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहे।
1: बिल्कुल, वेरी स्मार्ट,
0: आई नो।
1: अच्छा ये बताओ कि

0: अगर हम विज्ञान की ही बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम इंडिया की कुछ टेक्नोलॉजी, और आज तो स्टार्टअप का ज़माना है, स्टार्टअप से रिलेटेड और कुछ अपनी लाइफ में जो हमने देखा है कि हमने टेक्नोलॉजी से अपनी लाइफ कैसे आसान बना ली है. फॉर दैट मैटर हम बात करें कि आज हम AI का कितने अच्छे से यूज़ करते हैं, जब हमें हमारे श्रोताओं से बात करनी होती है और हम एक सब्जेक्ट तैयार करते हैं उसमें भी हम AI से मदद लेते हैं कि वो हमें और नई चीज़ों के बारे में बताए. तो तुम्हारा इन सब चीज़ों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है?
1: मुझे लगता है कि AI ने ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान तो बना ही दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे लगता है क्रिएटिविटी का इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हर तरह की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक प्रॉम्प्ट पर हमारी डिपेंडेंट है. हमें सिर्फ एक टेक्स्ट

0: ना है चैट जीपीटी पे या जेमिनी एआई पे या जितने भी अभी एआई प्लेटफॉर्म्स हमारे साथ में हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि जब हम 12th 11th में थे या कॉलेज में थे, तब मुझे लगता था कि एआई जो हमारी हेल्प करेगा वो हमारे रोज़ के रोज़मर्रा कामों में हेल्प करेगा, विच इज़ लेट्स से कपड़े धोना हो, कपड़े सुखाना हो, ताकि इंसान अपनी क्रिएटिविटी पे और ज़्यादा काम कर सके।
1: उल्टा होता है,
0: उल्टा हो चुका है
1: कि वो क्रिएटिविटी में हेल्प करता है और बाकी के जो अनस्किल्ड काम है वो, खैर वो अनस्किल्ड नहीं है, उनमें भी स्किल की ज़रूरत है, बट जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो हमें ही करने पड़ते हैं। इनफैक्ट तुमने ये जब बोला तो मुझे याद आया कि हम ऐसा भी सोचते थे कि एआई आएगा और जॉब्स ले लेगा, विच इज़ बहुत ट्रू भी है जो चीज़, जैसे मैंने आज देखा कि पहले जब हम शॉपिंग मॉल्स में या किसी ब्रांड के स्टोर पे शॉपिंग करते थे तो हमें एक रिसीट, एक बिल मिलता था, पेपर बिल, हार्ड कॉपी मिलती थी, और फिर गेट पे तुम्हें याद है एक भैया खड़े होते थे जो उस पर सील लगाया करते थे ताकि ये कन्फर्म होता था कि हमने वहाँ से कुछ लिया है। बट अब ई बिल्स आने लगे हैं, तो अब वो, तो मुझे लगता है छोटे छोटे तरीके से देखा, जैसे वो भैया की अब कोई जॉब, कोई रोल नहीं है। ऐसे हमने देखा अब सेल्फ सर्विस वाला सिस्टम चालू हो गया रेस्टोरेंट्स में, तो वेटर की जॉब के लिए बहुत रोल्स कम हो गए हैं। तो मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि एआई या इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद कहीं ना कहीं जॉब्स को लेके बहुत वो होने वाला है कि ऐसे जो छोटे छोटे जॉब्स हैं जिनमें ज्यादा स्किल की, ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं होती, वो बहुत कम हो जाएंगे। व्हाट डू यू से?
0: मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस चीज से, और मुझे लगता है कि खासकर कोविड के बाद में एक जो रिमोट वर्क कल्चर एक बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उसकी वजह से फिजिकल प्रेजेंस एम्प्लॉयज़ की जो रही है वो वैसे उसकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा कम ही होने लगी है। तो मुझे, हमारे युवा लोग बहुत कई बार, जैसे मैं अपने दोस्तों से बातचीत करती हूँ, मैं खुद भी एक फुल टाइम जॉब करती हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑफिस जाने वाले लोगों की अपनी एक अलग समस्या रहती है, और बारिश के मौसम में मुझे लगता है ऑफिस के लिए रोज़ कम्यूट करना एक अपने आप में मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है हमें श्रोताओं को ये बता देना चाहिए कि हम वो अपने कार्यस्थल पर कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, अगर हम ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हम अपनी सीटिंग का विशेष ध्यान दें। कुर्सी की हाइट कम या ज़्यादा होने पर, सीटिंग कंफर्टेबल ना होने पर हमें कमर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है। दूसरी बात ये कि स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लें, इससे अपनी आँखों और हमारे दिमाग को भी आराम मिलेगा। इन ब्रेक्स में हम टहल सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और हल्का फुल्का खा भी सकते हैं।
1: तो अब हम कॉल लेने के लिए तैयार हैं फाइनली जयती, तो हम आज के अपने पहले कॉलर का कॉल लेते हैं। श्रोताओं, टेक्निकल ग्लिच के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, पर पहला कॉलर हम लेते हैं।
0: हेलो फ्रेंड्स।
2: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल जी, क्या नाम है आपका?
2: शिवा लोहट, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: मैं हम भी बढ़िया हैं।
1: आपका नाम बताइए हमें।
2: शिवा लोहट मैम, एमपी विदिशा से।
1: अच्छा, तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आज आपको?
2: मैम मूवी का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम
1: जी,
2: इस और इसमें सोनू निगम जी की आवाज में गाना है, दूर वादियों से आ रही है पायलों की चमचम।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया गाना आपने चुना है। आपने ये फिल्म देखी है?
2: जी मैम देखी है।
1: पसंद आई आपको?
2: जी थोड़ी।
0: तो ये गाना पसंद करने के पीछे कोई खास वजह, अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आई तो फिर आपने इस गीत की फरमाइश आज कैसे की?
2: मैम देखिए, कभी कभी फ्लॉप फिल्मों में इतने बेहतरीन गाना होते हैं जो कि अपनी दिल की बात कहते हैं।
0: बिल्कुल, तो आप इस गाने के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते थे?
2: मैम ये संदेश से उस गाने को जब व्यक्ति सुनेगा तो वो खुद ही महसूस कर लेगा।
0: अच्छा, जो संदेश। तो आपने हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म से गीत हमें बोला है, तो हम वो ढूंढ रहे हैं हमारे सिस्टम पे। तो मुझे तब तक के बताइए कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप क्या कर रहे हैं बारिश के मौसम के लिए?
2: जी मैम, बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा जितना ज्यादा हो सकेगा उतना पौधरोपण करेंगे मैम।
0: बहुत अच्छा, आपने
1: तो बहुत अच्छा विचार है आपने जो सोचा है, तो अगर आपने इसको सोचा है तो करिएगा जरूर, और जो भी पौधारोपण आप करेंगे उन पौधों का वृक्ष बनने तक उनका ध्यान जरूर रखिएगा।
2: जी बिल्कुल मैम, जैसे कि हम पौधा लगाते हैं तो टीजाड़ जाली से उसको कवर कर देते हैं कि गाय वगैरह उसको नष्ट ना कर पाए।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। चलिए आपको सुनवाते हैं।

0: चलिए श्रोता, अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैं अनिल भंडारे सुजामन नगर से बोल रहा हूँ।
2: जी अनिल जी, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आज आपको?
1: आज हम बारिश के समय में चांद और सवेरे का गीत सुनाएंगे।
2: चांद और सवेरे फिल्म से?
0: सांझ और सवेरे।
1: बहुत
0: सुंदर गीत आपने बताया है, हम ढूंढ रहे हैं उसे अपने सिस्टम में।
1: तो
0: जी जी

0: हम ढूंढते हैं, तब तक बताइए आप कैसे हैं, क्या चल रहा है बारिश के मौसम में, आप क्या मजे कर रहे हैं?
1: बारिश के मौसम में हमारे आसपास खूब झरिया लगी हुई है, उसमें पानी अच्छा गिर रहा है और आपस में हरियाली चाहिए हुई है।
0: अनिल जी, आप अगर अपने रेडियो सिस्टम के पास में खड़े हैं तो प्लीज उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए, आपकी आवाज हम तक पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जी थोड़ा सा और दूर आ जाइए, क्योंकि थोड़ा ग्लिच होगा तो हमारे श्रोता भी आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। जी जी,
2: आप अपने एरिया की बात कर रहे थे, तो ये बताइए कि बारिश में कुछ समस्याएं भी आती होंगी, जैसे वाटर क्लॉगिंग या ऐसा कुछ, तो ऐसी कोई समस्याएं आती हैं आपको?
1: समस्या है कि आप पानी भर जाता है तो घुटने घुटने पानी आते हैं, उसमें जाना पड़ जाए अपने को।
2: अच्छा अच्छा, तो ऐसी
1: गंदगी थोड़ा आसपास वो ज्यादा हो जाती है।
2: जी जी जी, तो ऐसी समस्याओं से दूर करने के लिए उनको आप लोग क्या करते हैं, आपके आसपास के लोग भी क्या करते हैं?
1: उसके लिए प्रयास करते हैं कि पानी की निकासी अच्छी हो और कीचड़ और जमीने बाजी।
2: अच्छा, ये तो अच्छा कर रहे हैं आप।
0: तो अनिल जी, आपने सांझ और सवेरे फिल्म से अजहून आए बालमा ये गाना हमारे लिए, मतलब हमारे श्रोताओं के लिए फरमाइश किया है, तो हमें मिल चुका है ये गीत, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत युवावाणी कार्यक्रम से।

0: चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार महोदया।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अभिलाष सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी अभिलाष जी, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आज आपको?
1: फिल्म का नाम है प्रेम नगर।
0: प्रेम नगर फिल्म से?
1: ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया, काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया।
0: अरे वाह, बढ़िया चॉइस है आपकी, बारिश से जुड़ा हुआ आपने गीत पसंद किया है। और बताइए अपने शहर मुरैना के बारे में कुछ बताइए।
1: मुरैना एक चंबल संभाग में एक जिला पड़ता है, उत्तरी छोर पे मध्य प्रदेश के बसा हुआ है। और यहाँ बस मोटे अनाज की खेती होती है, हमारे यहाँ तेलहन की भी अधिक खेती होती है, मधुमक्खी पालन भी मुरैना जिले में अधिक मात्रा में होता है।
0: अच्छा,
1: और यहाँ की एक गजक मिठाई है बहुत प्रसिद्ध, सर्दियों में खाई जाती है।
0: जी जी जी, हमने सुना है उसके बारे में कि उसको GI टैग भी प्राप्त है।
1: जी जी।
0: और बताइए मौसम कैसा है इन दिनों आपके शहर में?
1: मौसम थोड़ी बारिश हो गई है, किसान अपने काम में व्यस्त हो गए, बोनी शुरू हो गई है।
0: अच्छा,
1: इसमें बोनी का कार्य चल रहा, मौसम बड़ा सुहावना है, हवाएं चल रही, गर्मी नहीं है बिल्कुल।
0: तो चलिए बढ़िया है कि इस सुहावने मौसम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: चलिए श्रोताओं, हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो
1: फ्रेंड। नमस्ते जी।
2: ये मुकेश ताकलेकर बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से।
1: अरे महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
2: जी तहसील वरुड़ जिला अमरावती से।
1: जी जी, तो बताइए आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म चांदनी का।
3: फिल्म चांदनी का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?

0: सुनते हैं आप?
1: तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा रोमांटिक गाना सोचा है आपने। तो और बताइए, कैसे हैं आप?
1: हाँ, बढ़िया है। आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: कार्यक्रम आकाशवाणी के पसंद है आपको?
1: बहुत बढ़िया, फरमाइशी। और फनी प्रोग्राम तो हम डेली सुनते हैं, आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
2: तो क्या आप हमारे आकाशवाणी के पुराने श्रोता रह चुके हैं? कब से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के कार्यक्रम?
1: आकाशवाणी के कार्यक्रम तो हम मोबाइल ऐप से जिस दिन से चालू हुआ उस दिन से सुन रहे हैं।
2: अच्छा अच्छा, जी जी जी।
1: और कुछ दिनों से भी मोबाइल ऐप जो है प्राइवेट वाले,
0: जी जी,
1: उससे आकाशवाणी के कार्यक्रम तो बंद हो चुके हैं, सुना ही नहीं रहा। सिर्फ एक ही न्यूज ऑन AIR पर सुना ही देता
0: है। हाँ हाँ, आजकल आप आकाशवाणी के कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर सुन सकते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं आप? क्या व्यवसाय है या क्या काम है आपका?
1: मैं ऑटोमेटिकली हैंडीकैप हूँ, तो मैं तो खेती के काम में मिल जाता हूँ। और अपने मेरा सिम कार्ड और रिचार्ज का, मोबाइल रिपेयरिंग का व्यवसाय है।
0: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि आप कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं। चलिए अब सुनवाते हैं आपको आपका पसंदीदा ये गीत।
1: जी।

0: चलिए श्रोताओं, हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ नमस्ते।
2: नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, दीदी बेरसिया जिला भोपाल से।
2: जी केसरी जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: आज आप सुनवा दीजिए रही थी, मूवी का नाम है दहलीज।
0: फिल्म का नाम है पहेली।
1: दहलीज।
0: दहलीज, अच्छा अच्छा। और दहलीज फिल्म से आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मेरे हमदम तुम्हें मेरे नगमे बुलाते हैं।
0: मेरे हमदम। तो केसरी जी, अगर आप अपने रेडियो के पास में खड़े हैं तो थोड़ा उससे दूर हो जाइए।
1: रेडियो तो चल ही नहीं रहा, पर क्या पता आवाज डबल डबल आ रही है।
0: अच्छा अच्छा, हमें भी आपकी आवाज थोड़े टेक्निकल ग्लिच हो सकता है कुछ, तो अभी ठीक आ रही है। तो बताइए कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं।
0: और आप क्या करते हैं?
1: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं ऑफ ईयर हूँ कि ऑन ईयर हूँ अभी।
2: आप ऑन ईयर हैं अभी?
1: अच्छा अच्छा
2: जी,
1: धन्यवाद।
2: तो आपने बताया आप आर्टिस्ट हैं, तो किस तरीके का आर्ट करते हैं आप? अपने आर्ट के बारे में कुछ बताइए।
1: चित्रकारी हुई, वॉल पेंटिंग, दीवार लेखन जैसे बोलते हैं।
0: अरे वाह,
2: तो ये आप अपने शहर बैरसिया में ही करते हैं?
1: हाँ, बैरसिया में और आसपास लगभग 50-150 किलोमीटर के अंतराल में।
0: अरे वाह। तो केसरी जी, अपने आर्ट्स रिलेटेड ही कुछ एक कोई छोटी सी स्टोरी हो हमें, तो हमें और हमारे श्रोताओं को प्लीज बताइए, क्योंकि हम आर्टिस्ट से बहुत कम जुड़ पाते हैं कॉल पर। हमारे यूजुअली जो श्रोता रहते हैं वो खेती बाड़ी या इसमें ही रहते हैं, तो आप चाहे तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए एक ऐसी कोई छोटी सी कहानी जो आपकी कला से जुड़ी हुई हो।
2: लेकिन उससे पहले एक बार आप अपने गाने के बोल फिर से बता दीजिए हमें।
1: मेरे हमदम मेरे नगमे तुम्हें बुलाते
0: हैं। जी,
1: तो छोटी सी कहानी ये है दीदी कि मैं एक बार एक अदालत में फोन आया वकील साहब वहाँ से, तो मैं पहले तो डर गया कि वकील साहब बोल रहे हैं क्या, मतलब क्या बात है। फिर उन्होंने बताया कि मैं हमको पेंटिंग कराना है, एक नाम लिखना।
0: अच्छा अच्छा।
1: और एडवोकेट और उनका मोबाइल नंबर लिखवाना है, मैं गया तो वहाँ जाकर मैंने उनकी टेबल पर उनका नाम नंबर लिखा और जज साहब आ गए। तो जज साहब बोलने लगे कि लड़के से पूछ के लिख रहे हैं, मतलब वकील साहब को डांटा उन्होंने।
0: जी जी।
1: उनको अभी इस टाइम लिखने बुलवाया, लग सर अभी जब कास्ट था तो हमने सोचा लिखवा ले। तो फिर वो जज साहब बोलने लगे कि यार कला तो है यार हाथों में, लिखो बेटा लिखो आप।
0: अरे वाह,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने हाल कला की कदर की।
2: जी बिल्कुल, तो बहुत खुशी की बात होती है जब कोई हमारी कला की ऐसे तारीफ करता है। चलिए अब सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: चलिए श्रोता, अब हम जुड़ते हैं हमारे आज के शायद आखिरी कॉलर के साथ में। नमस्ते जी।
1: मेरे प्यारे प्यारे मैम को मेरा प्यार नमस्कार।
2: अरे वाह, कितनी प्यारी आवाज है आपकी।
1: थैंक यू। और मैं ग्राम गुनोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री खुरवे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री
1: जी, और इस कार्यक्रम में मैंने पहली बार ही कॉल लगा है।
2: अरे वाह, और पहली बार में आपका कॉल लग गया, बधाई हो आपको।
1: थैंक यू।
0: तनुश्री, आप कितने साल की हैं? आप तो मुझे हमें बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: 19 साल की हैं,
0: तो आप तो अभी स्टूडेंट है, तो पहली बार मुझे लगता है युवा हमारे
2: साथी से हम जुड़े हैं।
0: बहुत अच्छा लगा। तनुश्री, पहले तो ये बता दो कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हो?
1: फिल्म का नाम है लुटेरा।
0: लुटेरा
1: जी। और सुना।
0: हाँ हाँ बेटू, लेकिन एक बार लुटेरा फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहती हो, एक बार उसके बोल बता दो गाने के।
1: हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए।
2: अच्छा, हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए,
0: सवार लूं गीत आप सुनना चाहती है फिल्म लुटेरा से।
2: तो आप कह रही थी कि आप कुछ गा के हमें सुनाना चाहती है, तो प्लीज सुनाइए।
1: हाँ, ये गाना गा के सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल।
1: हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए, गुलाब के झोंके आज भोरे आज रूठ गए, बता रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी का हाल क्यों ना नींद दे का हाल जरा, सवार लो सवार लो सवार लो सवार लो।
0: तनुश्री, आपने इतना अच्छा गा के सुना दिया, अब गाना बजाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपने इतने प्यार से हमें आज जुमाणी में कॉल लगाया है, तो सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: और मैं दो तीन दोस्त का नाम लेना चाहती हूँ।

0: श्रोताओं, ये था हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और कार्यक्रम की औपचारिक अंत करने से पहले हम चलते हैं उस सेगमेंट में जहां हम बताते हैं आपको हमने जो सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न आपसे पूछे थे उसके जवाब। और उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न था।
1: आज का आपका पहला प्रश्न था कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, जिसका जवाब है नेशनल हाईवे नंबर 44।
0: और आज का दूसरा प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, और इसका सही उत्तर है रफलेशिया आर्नोल्डी। तो हमें उम्मीद है आपने आज के कार्यक्रम के खूब मजे लिए होंगे और खूबसूरत गीत सुने भी होंगे। अब दीजिए इजाजत मुझे यानी कि जयती
1: और वैष्णवी को, आप सभी को हमारा नमस्कार।

यूथ प्रोग्राम युवाणी अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्रों से मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं आइए लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म मोहरा का ये गीत है साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजें।

दिल तो पागल है, इस फिल्म के लिए सुनिए लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाजों में ये गीत, आनंद बख्शी के बोल हैं और उत्तम सिंह का संगीत।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे थे अभी फिल्म संगीत। और अब वक्त हो चला है विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत के लिए। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
2: समर्थ हम सशस्त्र हम स्वच्छ भारतम विकसित भारतम विकसित भारतम।
3: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
4: श्रोताओं विकसित होता भारत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। नमस्कार श्रोताओं, विकसित होता भारत हमारे बढ़ते कदमों और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। प्रगति की ओर अग्रसर हम अपने राष्ट्र के लिए यही कहना पसंद करेंगे कि नए युग की नई उड़ान प्रगति पथ पर है भारत महान। ज्ञान और विज्ञान के संग गूंज रहा है विश्व में तिरंगे का गान। श्रोताओं भारत के इतिहास में ये वो दौर है जब देश एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। हमारे आसपास ऐसे कई देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक निश्चित समय में इसी तरह की छलांग लगाकर खुद को विकसित किया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये भारत के लिए सही समय है? श्रोताओं हमें इस स्वर्णिम युग के हर पल का फायदा उठाना है। हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना है क्योंकि विकसित भारत वर्ष 2047 भारत सरकार का एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य देश की आज़ादी के 100 वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाना है और सभी को मिलकर समृद्ध राष्ट्र की नींव रखना है।

लगाने की ये योजना है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। श्रोताओं, इस योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए तक की वित्तीय सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में देती है। आपको बताना चाहेंगे, योजना का लक्ष्य प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली की खपत को शून्य करना है, ताकि आम परिवारों के बिजली बिलों में बड़ी बचत होती रहे। साथ ही सीधी सब्सिडी और सस्ता लोन है। जी हाँ, सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए बिना किसी गारंटी के 7% तक के आकर्षक ब्याज दर पर लोन सुविधा भी उपलब्ध है। श्रोताओं, पात्रता की बात करें तो आवेदन के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करें। अपने कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करें। फॉर्म भरकर रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करें। और अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

0: श्रोताओं, वर्ष 2047 तक भारत को विश्व गुरु और एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में सौर ऊर्जा सबसे बड़ा आधार होगा। ये ऊर्जा स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और जलवायु नेतृत्व के जरिए देश को वैश्विक मंच पर सर्वोच्च स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सौर ऊर्जा के माध्यम से भारत कैसे विश्व गुरु बन रहा है और वर्ष 2047 तक इसका क्या योगदान होगा, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अक्षय ऊर्जा माध्यम के प्रोपराइटर श्री अक्षय शर्मा जी को। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मैडम, धन्यवाद है आपका।
0: सर, जैसा कि हमारी आज की बातचीत का विषय है कि विश्व गुरु बनने में सौर ऊर्जा का योगदान, तो आप इस बात से कहां तक सहमत हैं?
1: जी मैडम, हम बिल्कुल सहमत हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा है, यही अनंत ऊर्जा है। सृष्टि के आरंभ से अनंत तक सूर्य नारायण ही ऊर्जा के स्रोत हैं और हम भारतवासियों पर उनका विशेष आशीर्वाद भी है। तो भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से ही विश्व गुरु बनेगा, हम पूर्ण तरह सहमत हैं।
0: सर, बहुत ही अच्छी आपने ये बात कही कि आप सहमत हैं, ये भी हमें पता चला। सर, अब हमारे श्रोताओं को आप ये भी जानकारी दें कि सौर ऊर्जा का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है।
1: जी, ये एक बहुत शुरुआती प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को मुख्यतः हम दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। पहला, जहाँ हम सूर्य से प्राप्त गर्मी यानी उष्मा, और दूसरा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को सौर सेल के माध्यम से करंट में बदलकर बिजली उत्पादन करते हैं, जिसे हम फोटोवोल्टेक सिस्टम भी कहते हैं। जहां हम सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं उसमें सोलर वाटर हीटर, सोलर डिस्टिल्ड वाटर प्लांट, सब्जी, वनस्पति या औषधियों को सुखाने के अलावा मुख्य रूप से खाना बनाने के काम में लिया जाता है। खाना बनाने के लिए सूर्य भट्टी, जिसे पैराबोलिक कुकर भी कहते हैं, और शेफलर कुकर के माध्यम से हजारों लोगों का खाना कम्युनिटी किचन में बनाया जाता है। शिरडी में बनने वाला हजारों लोगों का खाना मुख्य रूप से पूर्णतः सौर ऊर्जित है और ऐसे कई किचन हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह कितनी ऊर्जा व ईंधन की बचत हो रही है। दूसरा, जहां हम बिजली का उत्पादन कर सौर ऊर्जा से करंट बनाते हैं, करंट को हम डीसी फॉर्म में प्राप्त करते हैं, जिसे डीसी उपकरण को बैटरी चार्ज करके सीधे उपयोग में लाया सकते हैं, या फिर जैसे हमारे घरों में सभी उपकरण एसी करंट ऑपरेटेड होते हैं
0: जी,
1: हम बीच में एक कन्वर्टर या इन्वर्टर लगाकर भी इस करंट को एसी करंट में बदलकर उपयोग कर सकते हैं। इन्वर्टर और बैटरी से संचालित सिस्टम को ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं, और आजकल 2017-18 से ऑन ग्रिड सिस्टम चलन में है, जो बहुत किफायती और जन सहायक है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है श्रोताओं को कार्यक्रम के माध्यम से। सर, वर्ष 2047 तक सोलर पैनल का तकनीकी विकास विश्व गुरु बनने में किस तरह से सहायक होगा, ये भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं प्लीज।
1: जी मैडम, सोलर पैनल की तकनीकी विकास ही सौर ऊर्जा की उपयोगिता को बढ़ावा देता है। जैसे पहला सोलर पैनल 1954 में बना था, जिसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी मात्र 6% थी, और यह केवल अंतरिक्ष के कार्यक्रम में उपयोग होता था, बहुत महंगा होता था, इसलिए हर जगह उपयोग नहीं होता था। जैसे जैसे विकास हुआ, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल आई, जिनकी दक्षता 15-18% और 18-22% तक हो गई, जिससे कम जगह में अधिक उत्पादन होने लगा। अभी भारत में बायफेशियल यानी दोनों तरफ से काम करने वाले एन टाइप टॉपकॉन पैनल लग रहे हैं, जिनकी क्षमता या दक्षता 23-25% तक नापी गई है, जो कम डिग्रेशन के साथ लॉन्ग लाइफ भी होते हैं। तकनीकी विकास कभी रुकता नहीं और आने वाले 10 साल यानी 2047 तक सौर ऊर्जा की दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी तैयारी भी है, निश्चित ही हम विश्व गुरु होंगे।
0: सर, हमारी शुभकामनाएं हैं। और सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं सौर ऊर्जा से संबंधित जो विकसित होता भारत में महत्वपूर्ण साबित होगी।
1: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अगर सौर ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाना है तो सरकार का प्रोत्साहन और मदद दोनों की जरूरत होगी। फिलहाल सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कई योजनाएं जारी हैं, जिसमें सौर ऊर्जा के विकास के लिए मुख्य रूप से दो योजनाएं हैं। पहली, प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना, जिसमें आप अपने घरों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर अपने बिजली के बिल को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसमें सरकार द्वारा लोन भी उपलब्ध है, साथ ही 3 से 10 किलोवाट तक के सिस्टम में 78,000 रूपए 78,000 रूपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। यह योजना मुख्य रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए जारी है, जिसमें उन्हें सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाकर दिए जा रहे हैं। इस योजना से किसान भाइयों की बिजली पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है। यह एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है कि आपको अपना आधार कार्ड, अपने खेत की खसरा नकल, बैंक की पासबुक और अपने क्षेत्र के ऊर्जा विभाग या नोडल एजेंसी के खाते में 5,000 रूपए जमा कर रजिस्टर कराना होता है और कुछ ही समय बाद आपके खेत पर सोलर पंप 5 साल के रखरखाव के साथ स्थापित हो जाता है। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान भाइयों को 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा किसी किसान भाई के पास अगर कोई बंजर जमीन है तो उस पर भी सोलर पार्क बनाकर क्षेत्र के बिजली विभाग से नेट मीटरिंग की जा रही है। दोनों योजनाएं जन सहयोगी हैं और विकसित होता भारत में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: सर, ये एक बहुत अच्छी बात है कि सौर ऊर्जा है, उसके माध्यम से हमारे जो कृषक भाई हैं वो लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कृषि जो है वो हमारे देश की रीढ़ है, आधार है
1: जी।
0: तो ये एक हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक बात है
1: जी।
0: सर, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2047 तक भारत कैसे विश्वगुरु बन सकता है, हमारे श्रोताओं को आप बताएं प्लीज।
1: नंदिनी जी, आपका यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सवाल केवल सवाल न होकर हम सभी के लिए एक चुनौती भी है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हम जैसे व्यवसायी या उद्योगपतियों के लिए अधिक काम करने की चुनौती है तथा आप और हम जैसे सभी ऊर्जा उपभोक्ताओं को इसे अपनाने की चुनौती है, और यह चुनौती हमें सहर्ष स्वीकार है। साथ ही पूर्ण विश्वास भी है कि हम 2047 तक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। इसके बहुत से कारण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण भारत में साल के 365 दिनों में से 300 से अधिक दिन सूर्य नारायण पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं, और बचे हुए दिनों में भी उत्पादन का शून्य होना असंभव है। दूसरा कारण है सरकार की दूरदर्शी योजनाएं, जिससे सभी उपभोक्ता प्रोत्साहित हुए हैं और योजना का लाभ लेकर स्वयं को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भारत अपनी आवश्यकता का 85% तेल आयात करता है। सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। साथ ही भारत बहुत तेजी से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उभर रहा है और वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के शीर्ष बाजारों में एक बन गया है। पीएलआई स्कीम के माध्यम से भारत सौर उपकरणों के घरेलू निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। इन्हीं मुख्य कारणों से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर भारत ही विश्व गुरु और विकसित भारत होगा।
0: सर, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आपने चुनौतियों का भी जिक्र किया था, तो हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसका हमें सामना करना होगा।
1: जैसा कि हमने बात किया, सौर ऊर्जा सबसे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी कही जाती है और सबसे सेफ एनर्जी भी होती है। इसमें विशेष रूप से कोई चुनौती नहीं है, केवल एक बार सिस्टम को ध्यान से, समझदारी से, सही उपकरणों के साथ इंस्टॉल करना होता है। इसमें प्रमुख चुनौती केवल जो सस्ती व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं या प्रतिस्पर्धा होती है, उसके कारण कुछ नुकसान जरूर होता है, लेकिन कोई भी इंस्टॉलर या कोई भी व्यवसायी अपना नाम और अपना काम खराब करना नहीं चाहता। वे अपना अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम सब नतमस्तक हैं। जैसा कि देखा जाता है कि बवंडर जब आते हैं तो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े उपकरणों का नुकसान हो जाता है, तो सोलर पैनल तो उनके सामने बहुत छोटी सी बात है। तो इन सब सुरक्षा कारणों का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्लांट का इंश्योरेंस भी कराना चाहिए, जिससे अगर कोई नुकसान होता हो तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस से की जा सके। देखिए, सभी लोग तो अपना काम ईमानदारी से करते ही हैं।
0: जी, बिल्कुल,
1: हम तो करना ही चाहते हैं, लेकिन सस्ती प्रतिस्पर्धा जो होती है वो इस क्षेत्र में एक बड़ा कारण बन के आ रही है, जिसमें एक विशेष चुनौती भी बन जाती है कि हम अक्सर हल्के उपकरणों का उपयोग करके अपने कस्टमर को भी धोखा देते हैं, साथ ही अपने नाम और काम को भी खराब कर लेते हैं।
0: सर जो आपने जानकारी दी उससे तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो विश्व गुरु बनने से हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा। सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल इसी ढंग से हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते ही रहेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता।
0: बिल्कुल सर। सर बहुत अच्छी हमारी बातचीत चल रही है और जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं कहीं न कहीं वे लाभान्वित हो रहे होंगे, उनका मार्गदर्शन भी हो रहा होगा। अब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ष 2047 तक भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य में सौर ऊर्जा की अनुमानित हिस्सेदारी कितनी है?
1: बहुत बढ़िया सवाल पूछा मैडम आपने। भारत की भविष्यवाणी के अनुसार 2047 तक भारत की कुल विद्युत क्षमता 2100 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें नवीनीकरण ऊर्जा का बड़ा योगदान होगा। इसमें अकेले सौर ऊर्जा के माध्यम से हम 46% तक योगदान कर सकेंगे, यानी ये आज की आवश्यकता को देखते हुए हमारी आधी से ज्यादा आवश्यकता हम सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी कर सकेंगे।
0: बहुत ही अच्छी बात है,
1: ये बहुत गर्व की बात है।
0: जी जी बिल्कुल। और सर अब हम बात करते हैं कि हमारे देश भारत में सौर

0: इंडिया का भविष्य उज्जवल कैसे है?
1: नंदनी जी, अभी तक की वार्ता में हमने विकसित भारत की बहुत चर्चा की
0: जी।
1: किसी भी विकास में जहां जन भागीदारी हो और जन जन की आवश्यकता हो, वो क्षेत्र सौर ऊर्जा का ही क्षेत्र होगा। न जाने कितने प्लांट लग चुके हैं, न जाने कितने प्लांट लगने वाले हैं। जहां 2014 तक सौर ऊर्जा की क्षमता पूरे भारत में मात्र 3 गीगावाट थी, आज 2026 तक 130 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। 2047 तक भारत का लक्ष्य अपनी क्षमता को सौर ऊर्जा के माध्यम से 2000 गीगावाट तक बढ़ाने का रहेगा, जिसमें अनगिनत रोजगार की संभावनाएं हैं, अनेक स्टार्टअप देखे जा रहे हैं, कई MNCs हमारे यहाँ उद्योग लगाने को तैयार हैं, कई MOU साइन हो चुके हैं। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरे नंबर पर आ गया है। इससे ज्यादा उज्जवल भविष्य और कहाँ होगा?
0: बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम शीर्ष पर रहें।
1: नंबर 1 जैसे इंदौर नंबर 1, तो इंडिया भी नंबर 1 होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर, एक और हम आपसे सवाल करना चाहेंगे सर, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आर्थिक आत्मनिर्भरता और विनिर्माण की क्या स्थिति, ये भी हमें आप बताएं।
1: नंदिनी जी, जैसा स्पष्ट है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता उत्पादन और खपत से नापी जाती है, इसे मांग और पूर्ति से भी समझ सकते हैं। कुछ साल पहले सोलर पैनल बहुत महंगे होते थे, 25 साल पहले ही हमने 200 रूपए प्रति वाट का पैनल खरीदा और बेचा है। वही वर्तमान में 50 से 60 हजार रूपए में 1 किलोवाट का संपूर्ण सिस्टम नेट मीटरिंग के साथ आपके घर पर लग जाता है। कारण है, खपत कम तो प्रोडक्शन कम, और प्रोडक्शन कम तो मूल्य ज्यादा। जैसे जैसे खपत बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम हो जाएगी। सोलर पैनल में सबसे महत्वपूर्ण घटक है सोलर सेल। सोलर सेल को आयात करके सोलर पैनल कई कंपनियां बना रही हैं, लेकिन सोलर सेल या वेफर, सौर सेल भी कहते हैं, वेफर भी कहते हैं, इसे बनाने वाली मुख्य 3 कंपनियां ही कार्यरत हैं, जो करीब 25 मेगावाट सोलर सेल का निर्माण कर रही हैं, जो कुल मांग का 10% ही है। सोलर सेल बनाने वाली कई कंपनियां भारत में निवेश को तैयार हैं और जल्द ही स्थापित होकर विकसित भारत में अपना योगदान देंगी। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व कर रहा है, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के माध्यम से सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। इसी के चलते हम निश्चित रूप से विश्व गुरु होंगे और हमारा जो विनिर्माण की स्थिति हो वो बढ़ती जाएगी। सोलर सेल को आयात करके सोलर पैनल बनाने वाली कई कंपनियां हैं, लेकिन सोलर सेल या वेफर बनाने वाली मात्र 9 मुख्य कंपनियां हैं, जो करीब 25 गीगावाट सौर सेल का निर्माण कर रही हैं। यह कुल मांग का 10% ही है, यानी 90% अभी भी हम आयात कर रहे हैं। लेकिन सौर सेल बनाने वाली कई कंपनियां भारत में निवेश करने को तैयार हैं और जल्द ही स्थापित होकर विकसित भारत में अपना योगदान प्रदान करेगी।
0: तो सर, आपकी बातों से तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो सौर ऊर्जा है
1: जी,
0: वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और विश्व गुरु बनने का जो हम सपना देख रहे हैं, उसे पूर्ण करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: जी बिल्कुल, सौर ऊर्जा अपने आप में एक विशेष रोल अदा करेगा इस विश्व गुरु बनने में, और यह हमें पूर्ण विश्वास है।
0: सर, कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, आमजन की क्या भूमिका हो सकती है?
1: आमजन से मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि सरकार की योजनाएं हैं और सरकार की नीतियां भी हैं कि अधिक से अधिक प्रोत्साहन हो, अधिक से अधिक मदद हो, जहां पे आर्थिक मदद भी दी जा रही है योजनाओं के माध्यम से और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, तो जन जन को भी अपनी भागीदारी इसमें निभाना चाहिए और अधिक से अधिक सोलर ऊर्जा का उपयोग कर सरकार को पूर्ण मदद करना चाहिए, ताकि हम विश्व गुरु बन सके।
0: सर, विशेष संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर आज आप कोई इस अवसर पर गीत सुनना चाहें तो अपनी पसंद का गीत बताएं प्लीज।
1: जी नंदिनी जी, आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है और विषय के अनुसार ही आज का गीत भी होना चाहिए। तो निवेदन है कि फिल्म हरीशचंद तारामती का गाना जगत भर की रोशनी के लिए सूरज तू जलते जाना रे प्लीज सुनवा दीजिए।
0: बहुत ही अच्छा गीत है सर, हमारे श्रोताओं के साथ इस गीत का हम आनंद लेते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, विश्व गुरु बनने में सौर ऊर्जा का योगदान। इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे थे अक्षय ऊर्जा माध्यम के प्रोप्राइटर श्री अक्षय शर्मा जी। उम्मीद करते हैं आपको ये भेंट वार्ता पसंद आई होगी। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। दुर्गेश नंदिनी को दे अनुमति, नमस्कार।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
2: समर्थ हम, सशस्त्र हम, स्वच्छ भारतम, विकसित भारतम, विकसित भारतम।
3: विकसित होता भारत, ये विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है सुगम संगीत का। आइए, आज सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं रूपाली मुखर्जी और साथियों के स्वर में ये भजन। आइए सुनें।

रूपाली मुखर्जी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत भजन। सुगम संगीत आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। और श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बलराम देवीलाल जाटव और मंडली से कुछ लोक भजन। आइए सुनें।

बलराम देवीलाल जाटव को आप सुन रहे हैं लोक संगीत के अंतर्गत। लीजिए सुनिए उन्हीं के स्वर में ये अगली रचना, बोल अरे चौरासी की नींद में। ये बोल हैं और लोक धुन है, लोक रचना है, मालवी लोकगीत है।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं बलराम देवीलाल जाटव और मंडली के सुर में मालवी लोकगीत। आइए सुने लोक गीत लोक संगीत की ये अंतिम रचना।

0: लोक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बलराम देवीलाल जाटव और मंडली के स्वर में मालवी लोकगीत। लोक संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज शाम 7:20 पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम में खेती गृहस्थी। किसान समृद्धि योजना के संदर्भ में बातें होंगी, भेंटवार्ता होंगी, पशुपालक पशुओं का रख रखाव बारिश के मौसम में कैसे करें इस बारे में जानकारी देंगे श्री लखनदास बैरागी, और साथ ही आप सुनेंगे कुछ लोकगीत भी। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, और रात 9:15 पर सुनना ना भूलिए चित्रगीत कार्यक्रम

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए हमारे कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

6:05 पर। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा 6:30 पर। आलेख नीरज सालवी का होगा, वाचक स्वर राहुल तिवारी और विषय होगा सकारात्मक सोच।

खेती की बातें लेकर हाजिर होंगी स्मिता दुबे। विषय रहेगा सोयाबीन की बुआई विधि कैसी हो। प्रसारण समय सुबह 6:35 पर। श्री रामचरित मानस गान के प्रसंग आप सुन सकेंगे सुबह 6:40 पर।

सुबह 7:20 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम वसुंधरा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम डॉक्टर विवेक चौरसिया से जानेंगे भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण कैसे किया जाए और उसके महत्व के बारे में भी। सुबह 7:35 पर सुनहरे पल सदाबहार फिल्म संगीत होगा। 8:30 पर कल के सितारे बच्चे हमारे ये कार्यक्रम लेकर आएंगे और इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा वर्ल्ड पेपर बैग डे पर। सहभागी बच्चे होंगे भविक पांडे, माही विश्वकर्मा और नंदनी पटेल। सुबह 9:00 आप सुन सकते हैं लोक संगीत में फतेह सिंह परमार को और सुबह 9:15 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की स्वर लहरियां।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कल सुबह 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे यशवंत बुआ जोशी का गाया राग बिलास खान तोड़ी। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10 बजे किया जाएगा। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा सुबह 10:05 पर और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे।

शाम की सभाओं में कार्यक्रम युववाणी होगा 5 बजे। 6:30 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे जगजीत सिंह को और लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा 6:45। कल शाम 7:20 पर कार्यक्रम खेती गृहस्थी में प्रमुख आकर्षणों में आप सुनेंगे जननी सुरक्षा योजना पर बातचीत, भेंटवार्ता होगी। हमारे बीच होंगी डॉक्टर नेहा द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक, और जिनसे आप सुनेंगे खरीफ के मौसम में वित्तीय जोखिम कम करने में फसल बीमा की भूमिका क्या होना चाहिए और क्या रहेगी। नगर विकास के कार्यक्रम का अनुप्रसारण समय कल रात 8:15 पर आकाशवाणी की भोपाल केंद्र से, और चित्रगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन होगा पत्रों के साथ रात 9:30 पर, और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा होगी रात 10 बजे। तो श्रोताओं, ये थी हमारे कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, और अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को हो जाएगा दोगुना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा।
2: 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी तरह परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था।
0: वहीं महू के युवा किसान जितेंद्र पाटीदार ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण किसानों की आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है। मार्केटिंग और डिजिटल तकनीक से प्राकृतिक उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
3: मैं जितेंद्र पाटीदार, निवास ग्राम सिमरौल, विकासखंड महू, जिला इंदौर का प्राकृतिक खेती करने वाला कृषक हूँ। प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण, भूजल संचय, जैव विविधता और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम संतुलन और आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
0: सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना था। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश और उसकी जनता को समझने के लिए पढ़ने की आदत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकालय राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है और इनके जरिए देश की संस्कृति और ज्ञान परम्परा की जानकारी लोगों तक पहुँचती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं।

0: हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को जिला भिंड के लहार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधा अंतरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजनाओं की शुरुआत से अब तक की 38वीं नियमित मासिक किस्त का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। हमारे सांदीपनि विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। आज इंदौर में हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर पर ड्रॉपआउट दर को शून्य करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे सांदीपनि विद्यालय मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। आज और भविष्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव हैं। इस अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में आज मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग ने लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की। खंडवा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आगामी 13 जुलाई को आयोजित होगी। देवास जिले में डायरिया से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के उद्देश्य से स्टॉप डायरिया अभियान का संचालन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में दस्तक अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। नर्मदापुरम शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनियों और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के लिए 15 जुलाई को नर्मदापुरम में युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन होगा। जबलपुर में व्यापार और उद्योग जगत में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की वुमेन्स विंग का कार्यक्रम कल रविवार को आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम का सुनने वाला सभी किसान भाई बहन ने कहा उनकी सुनीता बहन की घनी घनी राम राम। भाई बिछावा वृद्धि न समृद्धि का ताना वाना से बुने ली अपनी जाचम ने शुरू कर अपनो कार्यक्रम जिको नाव छे खेती न गृहस्थी। भाई वृद्धि की बात कालेन करी कि आज छे 11 जुलाई को दिन, आज छे विश्व जनसंख्या दिवस को, और आज अगर अपन भारत की बात करा तो 147 करोड़ अपन भारतवासी छे ना, विश्व की जनसंख्या 8.3 का करीब हुई गए छे। और बात करता करता आरु वृद्धि हुई रही होएगा 65% अगर हम बात करा अपना 35 साल से कम बाड़क ने की युवा ने की तो वो 65% का करीब छे, लगभग 95 करोड़ ऐसा हुई गए छे युवा छे। और विश्व जनसंख्या दिवस या अपन जो मनावन वे कारण मनावन की आबादी जो बढ़ी रही वो कारण जागरूकता रहे। और खाली हम एक ही बात नहीं करा कि हम बढ़ी रहे, बल्कि हम स्वास्थ्य की बात करा, रोजगार की बात करा, अपना समानांतर विकास की बात कर ले वहाँ आज को दिन एक आलेन अच्छे। और चूंकि हमारी 65% जो आबादी छे वो युवा नकी छे, 2026 की जो विषय छे वो भी ये रखेल छे कि युवा नकी आशा न आकांक्षा नख उनका सपना नख साकार करनूज और उनका भविष्य कालेन विचार विमर्श करनूज। तो आज हम सब मिली न आज वृद्धि जो हुई रही का बारे में सोचा, रोजगार का बारे में सोचा, स्वास्थ्य का बारे में सोचा, शिक्षा का बारे में सोचा, आवास का बारे में सोचा और संकल्प भी लेवा कि हम इन्हीं आबादी को रोकने की कोशिश करांगा और सतत विकास की तरफ आगे बढ़ांगा, समृद्धि की तरफ आगे बढ़ांगा। क्योंकि देखो वृद्धि होनो एक अलग बात छे कि हम बढ़ी गया भाई वो काम, लेकिन समृद्धि की साथ बढ़नो यू एक अपना आप में बड़ो हुई जाए कि हम कही सका कि हम पूर्ण रूप से समृद्ध छे। और आपकी समृद्धि की चिंता करी रहेल छे अपनी सरकार, क्योंकि देख रहे अपन तो ठेरा भाई धरती का सपूत, अपन तो खेती बाड़ी को काम करने वाला वो काम लगेला रवान, लेकिन अपनी चिंता करज अपनी सरकार। और एकालेनज वाला ही नायल छे प्रधानमंत्री किसान सम्मान समृद्धि योजना, और इन्हीं योजना का तहत खेती में उत्पादकता का बढ़ाउनु, खेती की लागत का कम करनु, और उनका जो कृषि का उपकरण छे उनका नमा आपका अगर कोई आर्थिक मदद होए, सब्सिडी होए, कोई ऋण लेनु चाहता है तो की सुविधा देनु। एक आम ट्रैक्टर का लेन, पाइपलाइन का लेन भाई 30-50% तक आप सब्सिडी दे सरकार अपन का, और ऋण की सुविधा तो अपन कहवांगा 0% ब्याज का साथ में आपका सहायता मिलज। अन आपकी आर्थिक सहायता का लेन 12,000 प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि में का तहत आपका मिलेगा। 6,000 रुपये अपन का जो देगा वो प्रधानमंत्री जी की मतलब केंद्र की तरफ से मिलेगा, और 6,000 राज्य की तरफ से प्राप्त होएगा। तो असो किसान सम्मान निधि आप ले सको। और एक ही जानकारी कलेन आवेदन कलेन मध्य प्रदेश को जो किसान पोर्टल छे या अपन कहवांगा मित्र केंद्र छे उनका ना से जानकारी ले सको, या कृषि कार्यालय छे ओका से जानकारी लेना न इन्हीं योजना को लाभ ले सको। तो हम योज कहवांगा कि वृद्धि का साथ समृद्धि का जोड़ो और समृद्ध शाली बनो और इन योजना को पूरो पूरो लाभ लो। एक ही साथ अज मन करो कि एक प्यारो सो लोक गीत भी सुनी लेव, तो सुना रामगीर वर्मा अन्न मंडली को गायलो यो प्यारो सो लोक गीत, फिर अरु करांगा बातचीत।

अभी अपन ने सुनियो रामगीर वर्मा अन मंडली को गायलो यो प्यारो सो लोकगीत, घणो आनंद भी आयो। पानी की बोझार न पड़ी रही, भाई अपन ये कहवा कि अपना साथ में जो नाना नाना बाळक छे वो नदी नाळा में जाणा में सावधानी बरत आना ध्यान रखा कि पूरा पूरी

0: अपना जो जाई राज घूमना फिरना ऐसा जाए तो सोईसाई कर चिकनी समी जो कापो हो रपट हो इनका नपन नहीं जाए आना एका में खाली अपना बाड़क न को ध्यान नहीं धरनु है अपना नाना नाना जो वाचरू छे उनका न को भी ढोढ़ंग कारचो छे उनका न को भी ध्यान रखनु कि हारी बीमारी उनका नहीं लगा आना मौसम को प्रभाव उनका पर नहीं पड़ा भाई इना समय में कसो रख रखाव कर एक आपा अपन एक बातचीत सुनी लेवान लखन दास बैरागी ग्राम लेकोड़ा आना उन्नीय जिला उज्जैन से अपना भाई ने ये बात करेल छे बैण संध्या कोठारी से तो सुनान ये पशुपालक भाई न की रख रखाव से संबंधित बातचीत।
1: किसान भाइयों, खेती बाड़ी का कामकाज का साथ साथ हमारा सभी किसान भाइयों पशुपालन को काम भी करे और देखो पशुपालन को जब काम करे तो उनको दोहरी आय हो। एक तो जो पशु से हमको जो चीज न मिले ओको उपयोग हम खेती बाड़ी में करी लेवा और खेती बाड़ी में जो अवशेष बचे हमारा वो पशु न का हम खवाड़ देवा एकासी हमारी आय भी अच्छी रहे और व्यय भी नहीं होता है। तो जो हमारा किसान भाई बहन पशुपालन करनू चाही रहा है या जो करी रहा है और ओका में काई काई परेशानी ना आई सकज और हमको काई सावधानी रखनी चाहिए आज इना विषय पर हमारा स्टूडियो में आयल छे लखन दास बैरागी ग्राम लेकोड़ा अंजना तहसील छे उन्हेल जिलो छे उज्जैन। तो भाई आप हमारा स्टूडियो में आया आपको स्वागत छे राम राम।
2: राम राम संध्या जी।
1: हमारा किसान भाई बहन के राम तुम राम राम कह दो तुम्हारी तरफ से
2: किसान भाइयों राम राम।
1: तो आज को हमारा विषय छे पशुपालन आना उनको रख रखाव। तो भाई हमारा जो पशुपालन करने वाला किसान भाई बहन छे उनका आप बताओ कि नया सिरा से कभी पशुपालन कोई चाहिए हो तो उन्हें काई करना चाहिए।
2: तो किसान भाइयों जैसे जो भी किसान नए सिरे से पशुपालन करना चाहता है वह सबसे पहले पशु की नस्ल का चुनाव करे जैसे गायों में है जर्सी गिर एचएफ साहिवाल ये अच्छी नस्ल की गाय है और जैसे अगर भैंस में आपको भैंस भी साथ में रखते हैं या फिर भैंसों का भी पशुपालन करना चाहते हैं तो भैंसों में जाफरी है मुर्रा है बन्नी है मारवाड़ी है ये दो तीन नस्ल की भैंस है। और सबसे पहले नस्ल का चुनाव करते पहले किसान भाइयों ये बात जरूर ध्यान रखें जैसे अपने जलवायु के हिसाब से नस्ल का चुनाव करें जो अपने वातावरण में जो सहन कर सके जैसे उच्च गर्मी जो ज्यादा गर्मी सहन कर सके ऐसी नस्ल का चुनाव करना चाहिए।
1: अच्छा देखो भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे यहाँ जैसे निमाड़ छे गर्मी बहुत पड़े मालवा में कुछ थोड़ा ठंडो रहे तो हम जहाँ जिस नस्ल की किस्म का जो हम पाला पशु न का पाला तो या तो हम उनकी व्यवस्था करा कि जैसे अपन जर्सी गाय ले आवा तो कहीं एसी में रखना की आदत रहे ओकर ठंडा प्रदेश में रहने वाली हरियाणा पंजाब की तो या तो वह व्यवस्था करा या हमारे यहाँ जो पशु पड़ी जाए या जो जीवी जाए वैसा लावा है नहीं भाई।
2: हाँ
1: अच्छा
2: जी जी जी।
1: अने एका साथ जैसे नस्ल की जानकारी तो आपने दी एका अलावा मौसम की भी बात अपने ने करी कि भाई मौसम भी कसो होना चाहिए अपना उन्हें अनुकूल होना चाहिए कि वो पशुओं में जीवी ले
2: जी
1: है नहीं तो अपन कहीं से लई ना आवान पत्तो चलो पशु के यहाँ गर्मी बढ़ी गई पशु अपना पचास पचास हजार लाख लाख का ही रहा भाई।
2: हाँ पचास पचास लाख लाख का ही रहा और ऐसे खराब मौसम में अगर उनकी जान चली जाए तो किसान भाई को भारी नुकसान हो सकता है उसमें।
1: हाँ भाई अपन तो आय का लेन कर ही रहे हैं अपनों तो वे हो जाएगी तो भाई अपन तो चाहिए रहा कि दूध डेयरी डाला और दूध को उत्पादन करा
2: जी
1: तो ओकारण कहाँ कहाँ का पशु लगेगा।
2: ओकारण मतलब जैसे भैंस में है जाफरी है जो 8 से 10 के आसपास दूध देती है
1: लीटर।
2: हाँ 10 लीटर के आसपास दूध।
1: अच्छा अच्छा
2: और मुर्रा भी अच्छा उत्पादन देती है मुर्रा जाफरी बन्नी जो अपने एरिया में सूट कर सकती है।
1: अच्छा हाँ
2: और अपने एरिया में सूट हो सकती है और आराम से किसान भाई को अच्छा मुनाफा प्रदान कर सकती है।
1: अच्छा तो भाई जैसे आपने दूध की बात करी
2: हाँ।
1: एकदम मैं याद आयो कि दूध तो अपन 10 लीटर लेवांगा मेसी ओके खिलाई पिलाई को कसो ध्यान रखना चाहिए।
2: तो खिलाई पिलाई भी बहुत अच्छी तरीका से ध्यान रखनी है किसान भाइयों जैसे कि उसको सूखा चारा 10 से 12 किलो और हरा चारा दोनों मिक्स नहीं तो अच्छा रहेगा।
1: अच्छा अच्छा
2: अच्छा रहेगा और जैसे बाटा देना है तो बाटे में खली है कपास की खली है दलिया है बाजरा है
1: अच्छा
2: ये मिक्स अपन दे सकते हैं।
1: अच्छा जैसे आपने दलिया बाजरा को
2: हाँ
1: यू बताओ भाई एक बनाई देना पड़े।
2: हाँ बनाई बनाई
1: दो
2: हाँ अच्छो बनाई कर दोगा तो पशु अच्छो मतलब पाचन करी पाएगा भी ना।
1: अच्छा, अच्छा
2: पचा ही सकेगा।
1: अच्छा मतलब जैसे वो अपन गेहूं जैसा थोली जैसा
2: हाँ हाँ
1: पिसाड़ लेवा और बनाई लेवा और गुड़ का साथ देवा
2: तो अच्छो फायदा दूध में भी उसके मतलब बढ़ता है और फेंट भी अच्छे आते हैं उसके।
1: अच्छा मतलब अगर दूध जमावा घी भी अच्छो निकल।
2: हाँ घी भी अच्छा
1: दूध तो भैंस अच्छो दीजगी।
2: हाँ
1: बिल्कुल भाई आप यू बताओ मका कि दूध एकदम शुद्ध मिला
2: जी,
1: ऐसा किसान भाई काई कर। मतलब कई बार किसान भाई आपको मालूम होएगा, अब हम तो कई बार तो कोई कह इंजेक्शन लगावे न फिर दूध ले तो कहां को इंजेक्शन रहे।
2: नहीं नहीं, ये पशुओं का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह दूध हानिकारक रहता है।
1: हाँ वो
2: और पशु पशु के लिए भी मतलब नुकसानदायक रहता है क्योंकि पशु फिर ज्ञावन नहीं हो पाता है, प्रजनन नहीं कर पाता है उसके बाद फिर।
1: अच्छा, अगर हाँ, इंजेक्शन से लिया।
2: हाँ, इंजेक्शन लिया और दूध अपने लिए भी हानिकारक रहता है।
1: हाँ मतलब
2: तो जो नेचुरल जो रहता है, जो उसके बछड़े बछड़ी जो उसको मतलब दूध पिला के ने जो वो देती है, दूध उतारती है अपने थनों में।
1: हाँ, हाँ।
2: वही जो प्राकृतिक उसी रूप से दूध लेना चाहिए पशु से।
1: वाह भाई कितनी अच्छी बात बताई महाराज कृष्ण भगवान की, प्राकृतिक रूप से जो भैंस जो गाय हमको दूध दे, पहले बछड़ा को पिवाड़ो फिर हम लेवा।
2: और कभी कभार ऐसा होता है जैसे किसी पशु का बछड़ा मर जाता है।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उस पशु को मतलब अच्छा बांटा दे और अच्छा खिलाओ, उनसे मतलब जैसे कनेक्ट हो जाए।
1: हाँ, हाँ।
2: जुड़ जाए
1: प्यार से रवा।
2: हाँ, प्यार से रवा तो वो पशु के नीचे बैठते हैं दूध निकालने तो हाँ। वो आराम से मतलब दूध उतार देता है।
1: हाँ मतलब पशु खिले पिले भी करा, उनको ध्यान हाँ, भी देवा हाँ। उनका साथ ज्यादा समय भी बितावा
2: हाँ।
1: तो निश्चित रूप से अगर बछड़ो मरी भी जाए तो भी भैंस अपन का साल डेढ़ साल दूध दही देगी। भाई टीकाकरण को कैसे अपना पशु ने टीकाकरण कराना पड़े।
2: हाँ हाँ दीदी, जरूर जरूर, मतलब पशुओं को समय समय पर टीकाकरण करवाना आवश्यक है।
1: अच्छा,
2: मतलब उससे क्या है कि पशु बीमार नहीं होगा।
1: अच्छा,
2: क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी है कि वो अपन को डॉक्टर को दिखाने की भी समय नहीं देती है।
1: अच्छा,
2: जैसे कि गलगोटू का अगर आपको अपन को पता चल जाए कि हाँ ये गलगोटू हो गई है
1: हाँ,
2: तो तुरंत अगर इसका इलाज हो जाए
1: हाँ,
2: तो पशु बच जाता, नहीं तो इसमें पशु की मृत्यु हो सकती है।
1: अच्छा, नहीं तो अपन जो ऐसी भयानक बीमारी ने छे
2: हाँ,
1: उनका टीका पहले से लगा लेना।
2: हाँ, पहले से लगा लेना चाहिए
1: है नहीं।
2: हाँ,
1: तो ऐसी कौन कौन सी बीमारी ने छे जैसे से अपना पशु ने अपन टीका से बचा सका।
2: जैसे खुरपका मुंह पका है, गलगोटू है और बहुत सारी जैसे कि उनमें ये लंपी वायरस भी आ गए थे।
1: अच्छा,
2: ये
1: अच्छा।
2: इनके भी टीके लगने चालू हो गए थे।
1: अच्छा,
2: तो इससे क्या है, इसे टीके लगते हैं ना और सरकारी योजनाएं भी निकलती है टीके लगाने के
1: बिल्कुल,
2: लिए
1: बिल्कुल।
2: गांव-गांव में आते भी है सरकारी डॉक्टर और ये जो टीके लगा जाते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ, जो ज्यादा किसानों को मतलब फायदेमंद होता है, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं।
1: अच्छा, तो देखो किसान भाई ना कल्याण बहुत अच्छी है हमारी सरकारी सुविधा ना बीच कि हमारा पशु पाला, अगर हम पशु चिकित्सक में जाए कई ना आवा तो हमारा पशु का टीकू भी लगाई दे और हमारा पशु की जान भी बची जाए। भाई हम अभी तो जैसे अपना किसान भाई पशु पाली रहे
2: हाँ।
1: कुछ घर का लेन, कुछ डेयरी का लेन, तो उनका लेन आप काई करना चाहोगा।
2: जो डेयरी के लिए पशु पालना चाहते हैं वह मतलब जैसे अच्छी नस्ल के पशु ले, जैसे कि जो ज्यादा दूध दे सके, जो किसान को लंबे समय तक दूध दे सके।
1: अच्छा,
2: जो डेयरी में वो मतलब ज्यादा फायदेमंद रहता है वो।
1: अच्छा,
2: और जैसे पशु अगर दूध दे रहा है तो वो साथ में ज्ञावन हर वर्ष भी आता है, जैसे हर वर्ष ब्याने जैसा हर साल या डेढ़ साल में बच्चा
1: हो जाए।
2: अच्छा, और दूध भी लंबे समय तक दे, कम से कम 3 या 4 महीने ही दूध बंद करना रहता है।
1: अच्छा, हाँ, तुम्हारो भाई यूज करना चाहिए कि जैसे अपन अपना घर का लेन पशु 2-4 पाला
2: हाँ।
1: तो ठीक है कि जब दूध दे जब वापरी लेवा
2: हाँ।
1: और जब गाबन हो जब ठीक है, पर डेयरी अगर उत्पादन करान तो एका लेन अपन ना बहुत सारा पशु भी रखना पड़े कि मान लो 10 पशु ने दूध दियो 10 ने नहीं दियो तो भी अपनी डेयरी काम चालू रहे है, अपन का बंद भी नहीं करना पड़े और अपन सब न का दूध घी, अब डेयरी में तो सबज उत्पादन हो
2: जी,
1: तो सबज अपन ना चालू रखना पड़ेगा। तो यह बात तो आपने जैसे बहुत अच्छी बताई। आप मैं यो बताओ कि जैसे अपन डेयरी का लेन पशु पाला तो अपन किस प्रकार की कितनी बड़ी जमीन चाहिए, कितनी जगह चाहिए, काम करने वाला मनुष्य चाहिए, कहीं सब मिली जाए।
2: सब मिलना संभव तो नहीं है क्योंकि पशुपालन में एक ऐसा व्यवसाय जैसे अपन खुद को करना पड़ता है इसमें।
1: अच्छा,
2: हाँ, अपन करेंगे तो अपन को पता चलेगा कि कौन सा पशु कितना खा रहा है या फिर कितना दे रहा है
1: हाँ, हाँ।
2: और अपन उनसे कनेक्ट भी रहते हैं पशु से।
1: बिल्कुल,
2: और खेती कम से कम अगर अपन जितने बड़े पैमाने पे करेंगे पशुपालन
1: हाँ, हाँ।
2: उतनी अपनी खेती चाहिए कि जैसे मक्का चारा या ऐसी नई नई वेरायटी आई है जो 3 से 4 वर्ष तक हरा चारा उपलब्ध कराती है।
1: अच्छा,
2: बाजार में।
1: अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब आपको कहने को मतलब कि जैसे अपने पास खेत भी इतना होना
2: हाँ।
1: है नहीं कि जहाँ अपन अनाज तो उगावें पर अपना पशुधन का लेन भी हरा चारा की व्यवस्था अलग से अपन करी लेवा कि रोज अपन काटीन लावा और अपना पशु ना का हरा चारो भी दई सका। अब वो पशु का तो रोज खाना के चाहिए, ऐसा तो नहीं कि अब सूखी गयो कि फिर काल का ही देवांगा, तो ओका साथ सूखो चारो सूखो भूसो खड़ी काकड़ा सब अपन खवाड़ा सही और असो पौष्टिक चीज ना खवाड़ा अपना पशु का कि शुद्ध दूध भी

0: मिला अपना। और देखो दूध तो ऐसा नहीं कि दूध को उपयोग करने वाला भाई कौन कौन है, वसा तो सब करा, पर सबसे पहले अपना नाना मोटा बाळक छे, बीमार मनुष्य छे
1: जी,
0: है नी, आन बूढ़ा ठाड़ा मनुष्य भी अपना दूध से कई बार कवाने की भाई दूध पी लियो तो जो कोई बात नहीं, इतना में अपना काम हो जाएगा, नहीं कहीं खावांगा तो भी चलेगा। तो दूध एक असो पौष्टिक आहार छे कि जितो शुद्ध मिला उतो मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा, और अपन का पशु का स्वस्थ रखना तो बहुत जरूरी छे। तो भाई देखो आप आया और आपने हमारी चौपाल पर इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारा सभी किसान भाई बहनों का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई। ये भाई था हमारा लखनदास वैरागी, ग्राम लेकोड़ा अंजना, तहसील उनेल, जिला उज्जैन का। तो देखो इनने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो भाई हूँ जो भी पशु पालन कर वो इन्हीं सब बात को ध्यान रख, और अगर ध्यान रखी ना जानकारी लई ना हम पशु पालन करांगा तो भाई बहन हमको कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमको फायदोज फायदो होगा, हमारी आय भी अच्छी हो जाएगी। तो एका साथ में हमारा सभी किसान भाई बहनों का धन्यवाद।
2: वाह, तो अभी अपन ने सुनियो पशुपालक भाई पशु ने की देखभाल कसी कर, खास करी ने बारिश का मौसम में न अपना ढोढंकार न की हिफाजत कसी कर, उनका स्वास्थ्य को ध्यान कसो रख। लखनदास बैरागी, ग्राम लेकोड़ा आंजना, तहसील उज्जैन, तहसील उन्नेल, जिला उज्जैन से पधारा था और उनका से बात कर रही थी बहन संध्या बहन, और उन्होंने बहुत अच्छा अपना अनुभव भी बांटा, ज्ञान भी बांटे, उन बतायो भी। भाई बातचीत तो अरु करांगा, पहले सुनी लेवान यो प्यारो सो लोकगीत।
3: धनुष मारो

तो अभी अपन सुनियो मानसी भोड़िया अने मंडली को गायलो यो प्यारो सो गीत धनुष मारो नहीं टूटे। बिल्कुल विश्वास रखो अगर हम किसी बात पर सीता माता सरी को राम पर तो यकीनन असंभव काम भी संभव हुई जाए और हमको देखता देखता लगज कि यो काम तो असंभव तो लेकिन अगर हमने दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया तो संभव ही गयो। और जो लोग की सुनियो उका घणो आनंद आयो। लोक संगीत की याज बात छे कि वो हमका शांति भी दे और आनंद भी दे और इन्हीं शांति ने आनंद का हम बचाई न रखा जो हमारी लोक संस्कृति छे। खास करी ना मैं युवा भाई बहन के कहवांगा कि वो हमारी असी जो विलुप्त हुई रही संस्कृति ओखा जरूर से बचाव संभाली न रख सहेजी न रख। बात खेती बाड़ी की हो गाँव की हो कि अपना संस्कृति की हो। गाँव नमन भी देखी राज दादा परदाता ना का समय में बावड़ी न थी कुआ था वो मजे का खड़ खड़ बहता था पणिहारी न छम छम पायल बजता था लेना जाता था। भाई आधुनिकता का हमने स्वीकार करो विकास करो पर विकास के साथ साथ यह बात तो बोलनू पड़ेगा कि हमने अपना कुआ बावड़ी न का खोई दिया है। तो अब अपना जो कुआ बावड़ी न छे उनका हम वापस से मजे का भरा आना जो खड़खड़ अपनो बैतो थो ओ को निर्मल पानियों का देवा और यो काम हम करनू पड़ेगा। सम्मिलन ना अपनी अमृतसरी की जो बूंद छे ओ ख बचानू पड़ेगा। और खाली बूंद की बात क्यों करा भाई माटी की बात कर लेवा अपन कि अपनी अरु कई काम की बात कर लेवा रोजगार की बात कर लेवा। भाई पहला गांव आत्मनिर्भर था। गांव न मतम देखो भाई अपन खाट बिछाने की बात कर लेवा तो ओका जानकार था। बीज भात लेने की बात जानकारी थी वो अपना बुढ़ाड़ा न कहती। भाई कपड़ों बुनने की अगर बात कर लेवा तो गांव में कपड़ों बुनते तो अपना परंपरागत जो उद्योग था वो गांव नमज था एक दूसरा को आदान प्रदान होते तो एक ही गांव पूरा आत्मनिर्भर थो। तो हम पूरा भारत को उन्ना तरीका से विकसित करनु चाहन ग्राम को विकास करा उत्थान करा अन अपना जो पुराना पारंपरिक जो रोजगार छे उनका न से जुड़ा और उनका आधुनिकता से जोड़ने की कोशिश करा। हो ही सकज कि आज की परिपाटी में आज का चलन में वो नहीं इतना हुई पह रहा है लेकिन हम भणी लिखी ना इतना तो कर ही सकन कि अपनी जो आधुनिक परंपरा पुरानी परंपरा छे ओका आधुनिकता से इन्हीं नई तकनीक से कसो जोड़ी सकान और ओखो देश दुनिया में कसो फैलाई सकान। एक बारा में सोचा और भाई मौसम की बात करा तो बारिश को मौसम चली रहेल छे। फिर मन कर रोज कि एक प्यारो सो लोकगीत तो हुई जाए सुनान फतेह सिंह परमार राही को गायलो यो बरखा रानी को प्यारो सो लोकगीत।

तो अभी फतेह सिंह परमार राही को गायलो यो प्यारो सो लोकगीत सुनियो। बरखा रानी की आगत का साथ जसो जसो मानसून सक्रिय हुई रोज भाई अपन सब वावणी का लेन तैयारी कर रहे छे, खेत की तैयारी कर रहा है, बीज भात की तैयारी कर रहा है। तो बीज भात में हम यो जरूर से कहवांगा कि पक्की जगह से खातरी बन जगह से जब अपन का बीज भात लाउनूज और बीज में भी तम देख ही लो कि टोड़ बंद होनू चाहिए और फिर तम का कौन सा सीट चाहिए, बीडर सीट चाहिए जसो रहे नहीं कि प्रमाणित बीज होनू चाहिए उन्हीं जगह को होनू। और किस्म को चयन करते वक्त खास करी नन्ना ध्यान रखो कि अपना माटी को स्वभाव कसो छे, उसकी स्वास्थ्य कसो छे, मतलब वो काम पोषक तत्व कहाँ कहाँ का छे वो तमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड से देख ही लियो होएगा। उना अनुसार अनुशंसित जो किस्म होए ओको ज अपन का चयन करनू अन अपना खेत में लगानू। हाँ यो जरूर कहवांगा कि सोयाबीन की अगर अपन खरीफ की बात कर ले वहाँ पीलो सोनो छे तो एकज किस्म खेत में लगाने का बजाय दो या तीन तरह की किस्म अगर खेत में चोपांगा तो घणो अच्छो रहेगा और जल भराव नहीं।

0: होने देवा अपना खेत में, ओकी भी पहले सोयसाय कर लेवा। और सोयाबीन जहाँ तक आप लगाओ तो रीछ फरोट जो पद्धति रहे, चौड़ी जो अपन नाली न बनावा उन्हीं पद्धति के अनुसार, बेड रीछ जो अपन कमन वह पद्धति से अगर अपन बोवावनी करांगा, तो भाई मौसम में कभी उतार चढ़ाव जसो आई जाए, ज़्यादा पानी पड़सी जाए, तो ओको असर अपना जो सोयाबीन की फसल पचे खास करी नहीं होएगा और आर्थिक नुकसान नहीं उठानू पड़ेगा। तो अपन का इन्हीं बात को भी ध्यान रखना, 100 मिलीमीटर की अगर बारिश हुई जाए तो तुम्हारा क्षेत्र में अपन देखी लो कितनी बारिश हुई, ओका से वावणी करना शुरू कर दो। हाँ, वावणी करना कड़े बीजोपचार जरूर करजो। बार बार हम शायद आप नख कवाएं कि बीजोपचार करनू बहुत अच्छो छे, FIR पद्धति से करनू चाहिए, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड जसो कहे, ओका बाद में राइजोबियम से कल्चर से करी न अपन ख बीज न ख बीजोपचार करी न वावणी करनू चाहिए। ये छोटी छोटी सी बात न छे, पण ये प्रबंधन का तहत आवज और एकज वैज्ञानिक तरीको कहे, कदी इना तरीका को आप ध्यान धरोगा तो अपनी कहीं की भी फसल हो आप ओकी खूब अच्छी करी सकोगा और लागत ख कम करने का लेन। ये छोटा छोटा सा उपाय छे, इनका करनू घणो जरूरी छे। तो हम आपने को योज करवांगा कि आप अपना खेत में मजे की वावणी करो, पण इन चीज ने को ध्यान धरो कि अच्छा से करो। हाँ, एक बात जरूर करवांगा कि भाई आप कीटनाशक न पण इतो सारो पैसो करो, उर्वरक न पण इतो पैसो करो, एक आलेड जैविक की तरफ आगे बढ़ो। और अपना एक आम खाद की बात कर ले वहाँ, तो गिंडोड़ा की खाद हुई, अपनी हरी खाद हुई, जैविक खाद हुई, एक उपयोग करोगा घणो अच्छो रहेगा। अभी से गांठ बांध लो कि अपन जैविक खेती करनू, ऋषि खेती करनू, प्राकृतिक तरीका से खेती करनू, एओ एको ध्यान धरनू जा आपका। और कीड़ा कुटकुट का लेने भी नीम को तेल हुई, नीम की खली हुई असो अगर आप करोगा तो घणो अच्छो रहेगा। बात न तो अरु मुक्ति छे करने की, पर अपनी घड़ी अपन ख अनुमति नहीं देती है कि अपन बातचीत करा। पर एक तो जरूर कहवांगी तुमको जो भी कार्यक्रम अच्छो लगे हो, नहीं भी अच्छो लगे हो, तो तुम हमका कारण चिट्ठी तो लिखो। हमारा पतो छे खेती गृहस्थी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र मालभाव सिंदौर पिन 6452001 पर हमका कारण चिट्ठी लिखो। इंतजार रहेगा। जाजम का अवेरा सुनीता बन तुम्हारे सले विदा कर, राम राम।
1: खेती गृहस्थी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। हमारा अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।

0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: अम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार अनुभा जी।
2: त्रिगुनायत जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड का 2 दिन का दौरा 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का उस देश का पहला आधिकारिक दौरा है। इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। आप इस दौरे के महत्व को कैसे देखते हैं?
3: अनुभा जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल में 12 साल के जो हमने देखा

0: है कि जो एक हाई लेवल एंगेजमेंट या विजिट डेफिसिट भारत से होता था देशों के साथ, वो कहीं के भी हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो दूसरे नेबरहुड में हो या लैटिन अमेरिका में रहे हो, ये सब चीजों को काफी अच्छी तरह से ब्रिज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जाते हैं, राष्ट्रपति जी भी जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, मिनिस्टर्स भी जाते हैं जगह जगह। अब बहुत सी जगह हमने देखा है, खासतौर से आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया वगैरह में
1: जी,
0: जो हमारे सबसे बड़े नेबर है, वहां पे 3 दशकों तक कोई विजिट नहीं हुई। तो अब आज देखिए 40 साल के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा हो रहा है यहाँ पर, तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक बड़ी बात है। कारण सीधा यह है कि हर एक देश इम्पोर्टेंट होता है, और इंडो पैसिफिक के अंदर में जो उसमें भारत का एक बड़ा स्टेक्स भी है, वहां पर जो ये रिलेशनशिप है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंडोनेशिया के साथ हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ में हो। तो जैसा आपने देखा कि हमने अभी उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश की, तो भारत है वो जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ भी अपनी मित्रता काफी बढ़ा रहा है, उनको काफी असिस्टेंस दे रहा है, उसमें भी इन सब देशों का एक बड़ा रोल है क्योंकि वो वहीं पर है। और इंडियन ओशन में इनके साथ में हमारे कोलैबोरेशन जो बढ़ने से, चाहे वो मैरिटाइम में हो, ट्रेड में हो, इन्वेस्टमेंट्स में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, तो ये सारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमने डिसाइड किया कि हमारा रिश्ता जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो जाए, ये एक इस बात को बताता है कि दोनों के लिए ही कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप जानती हैं कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बात किया तो उन्होंने कहा ये विनिंग पार्टनरशिप
1: जी,
0: तो दोनों के लिए विन-विन पार्टनरशिप है
1: जी। आपने अभी जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही, तो एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें कि नई दिल्ली और वेलिंगटन ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया है, जिसमें अगले 4 वर्षों में संबंधों को बढ़ाने का रोड मैप शामिल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आप बता रहे थे, अगर उस पे और आप थोड़ा सा जोड़ सकें कि ये अपग्रेड जो हुआ है दोनों देशों के संबंधों के बीच में, ये इन संबंधों को नया रूप कैसे देगा?
0: देखिए, दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक तो कि नॉर्मल चलते जाएं, जिसको आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है कि आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, कभी कभार हम कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के साथ हमारा कोऑपरेशन नहीं रहा है या ट्रेड नहीं है, लेकिन जब हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उस चीज को तब्दील करते हैं तो उसमें और बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट्स है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के बारे में हो, तो ये सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती है। इसीलिए जो रोड मैप तैयार हुआ है, चाहे उसमें हमने ट्रेड को 2030 तक डबल करने की बात हो, या हमारा इन्वेस्टमेंट हो, या जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन हो, या किस तरह से हम मैरीटाइम एरिया के अंदर में और ज्यादा अपना कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा महत्व रखती है आज की डेट में, क्योंकि दुनिया का जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की एक अनसर्टेनिटी है, उसमें वैल्यू सप्लाई चेन्स के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक गुड्स एंड सर्विसेज में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, और दोनों देशों ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे। आइए पहले सुनते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: अम्बेसडर त्रिकुणायत, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने एफटीए पर जो बयान दिया, तो ये जो फैसले हुए हैं आज, जो एक ट्रेड को डबल करने का फैसला और जो हमने एक एफटीए साइन किया है, ये जो फैसले हैं, ये दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने में कितनी अहम भूमिका निभाएंगे?
0: अगर आप देखें तो मार्च में 2025 में आई थिंक उनके जो ये प्रधानमंत्री थे भारत आए थे, और जब वो भारत में आए थे उस वक्त ये डिस्कशन हुआ था कि भाई हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ। आप सोचिए कि तब से लेकर के अब तक एक रिकॉर्ड टाइम में ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, रेटिफिकेशन होने वाला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड में दोनों देश एक दूसरे को एक स्पेशल डिस्पेंसेशन देते हैं, तो ये खाली ट्रेड में नहीं है, ये सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि भारत की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज हो, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, उस सब में भारत का एक काफी नाम है दुनिया के अंदर। हमारे लोग जो है जगह जगह जाते हैं, इसी तरह मोबिलिटी एक एग्रीमेंट होता है उसका पार्ट, कि किस तरह से हमारे प्रोफेशनल्स ट्रेवल कर सकते हैं, और इसी तरह से उनका भी है कुछ हिस्सा भारत के अंदर, किन चीजों में उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, इससे आप

0: आपको एक आशावादी है कि आपका जो ट्रेड है बायलैटरल ट्रेड एटलीस्ट गुड्स एंड सर्विसेज में वो डबल हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में इससे कई तरह का डायवर्सिफिकेशन भी होगा और जो डिपेंडेंसीज ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़ी फ्रजाइल सप्लाई चेन्स हैं उनको भी एड्रेस करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री के इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण जो नतीजा है वो रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: त्रिकुणायन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मैरिटाइम और डिफेंस में जो हमारा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, ये जो सहयोग है इसके लिए क्या नए मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं और ये जो बदलती इंडो पैसिफिक सुरक्षा स्थितियां हैं उसके बीच में इस सहयोग का क्या महत्व है?
0: आपको पता ही है कि दोनों ही मैरिटाइम पावर्स हैं, मैरिटाइम नेशंस हैं और दोनों के सामने बड़े चैलेंज है और चैलेंज आजकल दो तीन तरह का है। एक तो ये कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ देश फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नहीं मानते हैं और उस बात को पूरी तरह नकारा करते हैं, लेकिन भारत इस बात को मानता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योर इंडो पैसिफिक जो है वो ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट्स हो या आपका मैरिटाइम कनेक्टिविटी हो, उन सबके लिए बहुत आवश्यक है। और जिन देशों ने ये अंक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज को साइन किया हुआ है उनको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत मानता है कि ये ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के रूप में है। तो इसलिए यही न्यूजीलैंड का भी मानना है इस बारे में। एंड देयरफॉर हम लोगों का जो भी कई सारे एमओयू जो हमने साइन किए हैं इसके बीच में, डिफेंस के अंदर में हो, चाहे मैरिटाइम सिक्योरिटी में हो, हाइड्रोग्राफी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, मैरिटाइम हेरिटेज के बारे में है, तो ये सारे एमओयू जो है यही बताते हैं कि हमारा जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कॉपरेशन है या इंटेलिजेंस कॉपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी तरह से ओशन जो है उनका पोल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह से जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हार्नेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ इसके अंदर में आती हैं और उससे काफी बड़ा फायदा होता है दोनों देशों को।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज घोषणा की कि भारत और न्यूजीलैंड भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान भी एक ऐसा ही समझौता किया गया था। तो फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई दिल्ली और अन्य देशों के बीच ये इस तरह का जो सहयोग बढ़ रहा है इसे आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, दुनिया में हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जो युद्ध हुए हैं इतने सारे, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसके समय पे हमने ये देखा है कि ज्यादा से ज्यादा जो देशों को एक ऐसा आपस में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई थर्ड कंट्री की करेंसी की आवश्यकता ना हो। और इसी तरह आजकल कोऑपरेशन फिनटेक एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ मीडियम बन गया है और टेक्नोलॉजीज हैं जिसके जरिए दो देश काफी कुछ कर सकते हैं आपस में। और भारत ने जो अपना यूपीआई डेवलप किया है, यूनाइटेड पब्लिक इंटरफेस, उसको आप सोचिए कि कम से कम 25 देशों के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब है कि हम उस देश की करेंसी के साथ डायरेक्टली बिना किसी थर्ड कंट्री की करेंसी के जाए बिना व्यापार कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, टूरिज्म में लोगों को बड़ा फायदा होता है, बड़ा आसानी होती है जाने में, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर रिमिट करने में एक क्लिक के ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया ने देखा है और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी भारत के यूपीआई को बहुत सराहा है
1: जी।
0: आपने देखा पीछे जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तो जब उन्होंने चाय पी और क्यूआर कोड के जरिए वो दिया, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि किस तरह भारत का यूपीआई ज्यादा से ज्यादा देश में एक्सेप्ट हो रहा है और ये दोनों के ही भले की बात है।
1: आज न्यूजीलैंड में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि कैसे न्यूजीलैंड और भारत दोनों महिलाओं के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: अम्बेसडर त्रिकुणायत, बात चाहे महिलाओं के योगदान की हो या जिस देश का भी दौरा प्रधानमंत्री करते हैं वहाँ भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं उनके योगदान की बात करते हैं वो हमेशा, तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं अपने दौरों के दौरान भारतीय मूल के लोगों की उस देश के विकास में, तो ये कितना बड़ा एक मोराल बूस्टर होता है और दो देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने में कितना महत्वपूर्ण है।
0: यहाँ तक हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो 10,000 करीब लोग वहाँ पर थे जिन्होंने

0: उनको सुना और आपने देखा कि वहां के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में गए
1: जी
0: और यही दर्शाता है। और ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, इंडोनेशिया में आपने देखा कि वहां पे तो उन्होंने कहा कि डीएनए ही है हमारे अंदर उनके राष्ट्रपति। तो जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं भारतीय मूल के लोग जो वहां पर हैं या एनआरआईज हैं, वो किस तरह वहां के लोगों के साथ मिलजुल करके उनके देश के डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो उसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। भारत ये अप्रिशिएट करता है कि हमारे भारतीय लोग या भारत मूल के लोग जो हैं वो एक लिविंग ब्रिज की तरह हैं दोनों देशों के बीच में। और रही बात जहां तक वुमेन लेड डेवलपमेंट की, तो आपको याद होगा जब हमने G20 समिट की थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री ये नहीं थे, वुमेन एम्पावरमेंट को छोड़ के उसकी जगह एक नया एक मंत्र दिया था जिसको कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में स्त्रियों को और से ज्यादा सुविधा मिले और उनको उस तरह का। तो ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है दोनों देशों के बीच में, उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बढ़िया बना सकते हैं, तो उसका मतलब मैं समझता हूँ इस बारे में था। और जहां तक हमारे जो डायस्पोरा है, मैं कहूंगा कि वो तो हर जगह कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी एक तारीफ होती है और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन उस देश की बढ़त के लिए होता है उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं।
1: कृषि के क्षेत्र में दोनों देश हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी उद्योग में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड की जो एक्सपर्टीज है और भारत का एक जो बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार और एग्री टेक टैलेंट है, वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं?
0: देखिए, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, भले ही हम टेक्नोलॉजी में, आईटी में और सब चीजों में काफी प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन आज तक हम यही कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है
1: जी।
0: ये तो बात सब जानते हैं इस बारे में। और भारत में भी बड़े रिवोल्यूशन हुए हैं, चाहे वो ग्रीन रिवोल्यूशन हो, चाहे वो येलो रिवोल्यूशन हो या व्हाइट रिवोल्यूशन हो। तो न्यूजीलैंड के बारे में अगर देखें, उनकी इकोनॉमी में भी डेयरी और एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को, एग्रीटेक जिसको बोलते हैं, उसमें रिसर्च करी है। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, ये हमारे बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक्सचेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस हैं, उस सब में और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक मैकेनिज्म बनाई गई है और इसीलिए ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रोड मैप के अंदर में, उनको मॉनिटर करने के लिए एक फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे एक बड़ी कमेटी का गठन किया गया है दोनों देशों के, जो उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि भाई खाली बोलने के बाद ही नहीं है कि हम चले गए, विजिट खत्म हो गई, लेकिन यह है कि इसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई हर चीज के ऊपर में। और मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बनाना एक अच्छी बात है।
1: लोगों के स्तर पर यानी कि पीपल टू पीपल लेवल पर सहयोग के वो कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आज दोनों देशों ने एक सहमति बनाई है और वो कितने महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जहां तक पीपल टू पीपल है तो टूरिज्म एक बड़ी चीज है, तो उसमें अगर फैसिलिटेशन होता है हमारा वीजा के ऊपर में। दूसरा चीज ये है कि भारतीय लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, वो वहां पर जाते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, एक दूसरे के जो कल्चर को जाने वहां की माओरी जैसे है ट्रेडिंग, उनको बुलाया जाए, उनको यहां पर किया जाए, उस तरह बहुत सारे हर एक देश की अपनी अपनी प्रोजेक्शन होती है। तो भारत की जो है जैसे अब योगा है वो वहां बड़ा पॉपुलर है, तो ये सब चीजें होने से जो है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस तभी बढ़ेंगे जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे कल्चर को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें भी जो हमारा जो डायस्पोरा है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
1: अम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में
4: ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारण के दौरान। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। हाँ, कितनी बारिश हो रही है। हाँ, इस बारिश में लगभग तुम्हारी याद सी आ गई। हाँ, याद है ना तुम्हें? यदि तुम भी ये कार्यक्रम कहीं सुन रही हो, मेरी बातों को कहीं भुना रही हो, तो बस यूं समझो कि रेडियो सुनते सुनते अरसा बीत गया। हाँ, साल 2000 की तो बात थी। जुलाई की हल्की बारिश के साथ नए साल की शुरुआत हुई थी। 11वीं कक्षा का वो पहला दिन था और क्लास में हर कोई नई दोस्तों की तलाश में था, लेकिन मैं तो हमेशा की तरह चुपचाप वही आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया था। कुछ ही देर में क्लास टीचर तुम्हें लेकर क्लास में आई और तुमसे मुखातिब कराया, तुम्हारा नाम बताया कि आज से तुम हमारी क्लास में पढ़ोगी। नया नया ट्रांसफर हुआ था तुम्हारे पापा का और तुम हमारी क्लास में उस बहाने से आ ही गई। तुमने मुस्कुराकर सबको हेलो बोला। तुम्हारी उस मुस्कान में सादगी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। पूरी क्लास में सिर्फ एक ही सीट खाली थी, मेरे बगल वाली, और तुम वहीं आकर बैठ गई। बरबस देखता रहा तुम्हें। यूं समझो कि आंखें यहां वहां हो ही नहीं रही थी। मैं अपने आप को फिल्म साजन का संजय दत्त समझ बैठा और तुम्हें माधुरी दीक्षित।

इतनी तेज बारिश और तुम्हारी वो स्कूल वाली यादें। सुबह सुबह की प्रार्थना जब होती थी ना, तो बस तुम्हें देखने का मैं इंतजार करता रहता था। सफेद यूनिफॉर्म, कंधे पर स्कूल बैग और चेहरे पर तुम्हारी वो हल्की सी मुस्कान। उस दिन के बाद जैसे हर दिन मेरे लिए खास सा बन गया था। लंच ब्रेक में दोस्तों की बातें होती थी कम, और तुम्हें और तुम्हारी झलक ज्यादा मायने रखती थी मेरे लिए दोनों। हाँ हाँ, याद आ रहा है मुझे कि हम दोनों में कभी खुलकर कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन नज़रें तो अक्सर एक दूसरे से मिल ही जाती थी, और कभी तुम मुस्कुरा देती थी और कभी मैं मुस्कुरा देता था। तुम्हें तो शायद याद ही होगा कि एक दिन छुट्टी के वक्त बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई थी। तुम उस समय स्कूल की छत के नीचे खड़ी थी। मैंने अपना छाता तुम्हारी ओर बढ़ाया था और तुम्हें पूछा भी तो था कि अगर बुरा ना मानो तो क्या साथ चल सकते हैं। पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहे, लेकिन उस खामोशी में भी एक अनकहा रिश्ता था। हाँ, एक अनकहा रिश्ता। वो बातें तुमने जो आंखों से कहने की कोशिश की थी और मैंने समझने की।

0: दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कहानी चल रही है एक बहुत ही खूबसूरत सी। बस कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए, हम अभी लौटते हैं।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू।

0: बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं। कहानी बड़े ही सुंदर सी है, आगे चलते हैं इस कहानी में। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, पहले दिन, वो पहला दिन तो तुम्हें याद ही होगा ना, जब हमारा नया नया एडमिशन और वो नई नई मुलाकातें हुई थी। तुमने सिर्फ हेलो कहा था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा वही हेलो नोट्स बांटने तक पहुंच गया, फिर लंच शेयर करने तक, और देखते ही देखते कब हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। स्कूल की लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, अलग अलग असाइनमेंट्स की तैयारियां करना, स्पोर्ट्स डे पर एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, हर छोटी सी याद उस दोस्ती को और गहरा करती चली गई। और फिर एक दिन जब परेड चल रही थी अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की, और मैं परेड की तैयारी में लगा हुआ था, तुमने कुछ आकर कहा, कुछ समझ नहीं आया। तुमने फिर कुछ आकर कहा, फिर मैं समझ नहीं पाया। वो कश्मकश कुछ ऐसी लग रही थी जैसे वो फिल्म सर्वपुरुष देखी थी ना, बस कुछ वैसी ही, जैसे तुम उसका वो गाना गुनगुना रही हो। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हाँ
4: अच्छा, डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
5: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
4: सुना।
5: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

कितनी अजीब होती है ना जिंदगी। कब वो 11वीं कक्षा में हम लोगों ने एडमिशन लिया जुलाई से, कब 12वीं क्लास में पहुंच गए फिर जुलाई में। बारिश का मौसम तुम्हें और मुझे, हम दोनों को बहुत पसंद था। छुट्टी के बाद जब स्कूल के मैदान में मिट्टी की खुशबू फैलती तो तुम्हें तो याद ही है कि हम दोनों वो बरामदे में आकर खड़े हो जाते थे उसी हल्की भीनी भीनी बारिश में, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हुए। और तुम हमेशा क्या कहती थी, हाँ तुम कहती थी कि कुछ यादें भी बारिश के जैसे होती है, जितने पुरानी होती है उतने ही अच्छी महकती है। और मैं बस मुस्कुरा देता ये सोचकर, जैसे वो माधुरी दीक्षित पर फिल्माया हुआ एक गाना था ना, ओरे पिया, तुम्हें बस मैं उसी फ्रेम में देखा करता था, जैसे तुम उसी फ्रेम में खिलती खिलाती चुलबुली सी बारिश का पूरा आनंद उठा रही हो और बहुत खुश हो रही हो। बड़ी अजीब होती है जिंदगी, कब कहाँ कैसे मिलाती है पता ही नहीं चलता।

वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आ गई। अब तो हम दोनों ही जानते थे कि अब स्कूल का सफर खत्म होने वाला है। विदाई समारोह के दिन पूरा स्कूल हंसी और आंसू के बीच झूल रहा था। सब एक दूसरे की शर्ट पर ऑटोग्राफ लिख रहे थे। लेकिन तुमने मेरे शर्ट पर सिर्फ एक लाइन लिखी, कुछ रिश्तों को नाम नहीं, यादें हमेशा के लिए मिलती है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। तुमने सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना, तुम भी, और कभी मुस्कुराना मत छोड़ना। उसके बाद हम दोनों की वो राहें अलग हो गई। साल बीतते गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। स्कूल की कॉपियों को देखते देखते बस तुम्हारी यादें दिल में सहज के रह गई। तुम्हारा वही फूल जो एक दिन मैंने किताब में रखा था, वो कुछ यूं कह रहा था कि जब ये फूल सूख जाएगा तब भी हमारी दोस्ती की खुशबू नहीं जाएगी। आंखें नमसी हो गई। आसमान की तरफ देखा मैंने, फिर से बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन हां, ये जरूर है कि महसूस हुआ कुछ लोग जिंदगी में हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आते। वो आते हैं ताकि हमें कुछ सिखा सके कि सच्चे रिश्ते हमेशा पाने से नहीं, निभाने से भी खूबसूरत बन जाते हैं।

0: आज भी जब हल्की बारिश होती है तो मैं बस मुस्कुरा ही देता हूँ। मैं जानता हूँ कि पहला प्यार भले ही मुकम्मल हो ना हो, लेकिन उसकी यादें पूरी उम्र दिल को मुस्कुराना सिखाई देती है, क्योंकि दिल हमेशा याद करता रहता है। तो श्रोताओं, ये थी आज की ये कहानी, दिल ने फिर याद किया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब इजाजत मनीष कुमार सोनी को, दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और अब से कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
4: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436793084915523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और

0: नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर

0: में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management,

फिल्म है श्री 420। शैलेंद्र की बोल है, शंकर जयकिशन ने धुन तैयार की और आवाज लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

फिल्म निर्देशक शिव साहनी ने एक फिल्म को निर्देशित किया। उस फिल्म का नाम था नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। 1966 में बनी ये फिल्म थी जिसमें आशा भोसले और मदन मोहन ने अपनी आवाजें दी थी। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत भी मदन मोहन का ही था। उसी फिल्म के लिए ये गीत सुनिए।

1958 में बनी फिल्म चलती का नाम गाड़ी, किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस डी बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवाः, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो जगन्नाथो चढ़ी नंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नव दिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्न वेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ट संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है, फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भूई

0: सेवक है, इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है, और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा भोई कमार रूपकार चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञामाण आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारम्भ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती है, पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद तो ये पक्षी पांचन होता है, आम केला कनस सपुरी कपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है, पक्षी होता है, मुख और नारियल का पूरा जल लवंग जायफल दे के चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का भजन का जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। काल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कवि इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियाँ उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितेंद्र विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। पूसा सूर्या है, पूसा रुनिमा, पूसा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संचेषण के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सुंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखे ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है, और आम के नाम पे देखे दिल्ली एक जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर ले वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। वैसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कटिहारा से आया हूँ। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कटिहारा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
5: मेरा नाम रामकिशोर मौर्य है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने।

0: जाने हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियां है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
1: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलियावाल लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुस्नारा है, दशहरी है, रामकेला है, जन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
2: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटन अटारी ये दिन हमारे ध्रुव उहे के जन्म में हो। उस दिन हम अटारी में रहें, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लेके ला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रही हूँ। माँ गावे है

आए हो। बाटी भोरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सुर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के दनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के

कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु और मैं नहीं परखे सके हूँ इसे की आज भी गुंजा थे तेर के आधार पे ही मैं तेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ तो

ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उन मन रोना शुरू कर देते हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते ते हमला कैस कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजे घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है अब आगे बढ़ मालिक के हाथ।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण हुई है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम के रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते।

0: अतिथि बहका सकत रहे हूँ, ओमे अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गार्डर ही ते गार्डर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत है अच्छा लगते लेकर मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूं और नरसिंह ला भेटे हूं खंभा मा, भूर बिनत सौरी ला भेटे हूं क्यों टल भेटे हूं गंगा मा।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया।

0: सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
1: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामवरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामवरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामवरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामवरपु विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. ई मणि शंकर शास्त्री. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command of a laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।

0: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam.
1: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है.
0: Dr. Ramavarapu Madhuri Devi begins her concert with Shakti Ganapati, a composition of Muttaya Bhagavatar in Natragam Rupak Talam.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: शिनेक्स प्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रीति गौड़ रागम त्रिपुट तालम.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस

0: आरोप की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagat Roy is one of the members of the committee. Union Railways and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub, with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres. legendary playback singer S. Janaki, fondly known as the Night